शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

गुस्ताखी माफ करो, अगर कोई अंग्रेज अफसर आता है तो आप बीलो मील भागे चले जाते हो तो मिलने के लिए, आप आगे आगे और मैं पीछे पीछे। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा को मिलने के लिए मैं आगे आगे और आप मेरे

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मानो तो सब कुछ, न मानो तो कुछ भी नहीं।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं परंतु महासागर शांत रहता है।

कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूँ गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: अरे आओ आओ संतो, आओ आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठ बैठ बेटे, यहाँ आओ। यहाँ विश्राम कर। देखो ये मेरी छोटी सी कुटिया है और मेरे भगवान है, मैं इनका सेवक हूँ, रोज रात इनके चरणों में बैठकर इनका गुणगान करता हूँ।
3: आप धन्य है बाबा।
2: बेटे नित्य की तरह आज भी इनका भजन करूं, तुम्हें कष्ट तो नहीं होगा?
3: कष्ट की क्या बात है, इसमें तो हमें परम आनंद होगा।
4: ये तो हमारा परम सौभाग्य है बाबा।
2: जैसी प्रभु की इच्छा।

0: नया सवेरा हो गया, स्नान करके प्रभु के दर्शन करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।
1: क्या आप सच कह रहे साधु महाराज? हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, हमारी मनोकामना पूरी होगी।
2: जाओ बेटी, जाओ जाओ।
3: आओ गंगा, आओ गंगा।

0: स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जनाब अली, ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? 01204060205 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं, यानी कि शहर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलेगा, 120 नंबर हो जाता है 4060205। इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और कभी लगता है कि एक मुलाकात बहुत जरूरी है तो आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। कहा जाता है वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर। शारदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय और दिल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जब लोग आते हैं तो हम उनसे बेझिझक मुलाकात करते हैं और मुलाकात का जो सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे ही इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान है। कौन है, कहाँ से है, बड़े ही खूबसूरत दोस्त है, उनसे हम बातें करेंगे, बताएंगे जरूर कि वो कौन है। सो कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। तेरी

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है वो सारी बातें हम यहां से कर रहे होते हैं, जैसे कि बिंदास सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें, डॉक्टर्स की बातें, बहुत कुछ खास हम लेकर आ रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए, जब बिंदास बातों का जिक्र किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ने पढ़ाने की बातें होंगी और बातें होंगी स्टूडेंट्स के बारे में, बातें होंगी जिंदगी को किस तरीके से बिंदास जिया जा सकता है। तो खैर, फाइनली आज हमारे साथ हमारी एलुमनाई जुड़ रही हैं जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है, नाम मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2018 पोस्ट बीएससी की आप पास आउट स्टूडेंट हैं और इनका जो कोर्स कंप्लीट हुआ 2020 में, 2020 में ये कोर्स कंप्लीट हुआ और ये अपने देश बांग्लादेश चली गई और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में आप वर्किंग वुमेन हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ इसके बाद कुछ प्लान है इनके। और कोविड के समय की अगर हम बात करें तो कोविड के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फाइनली ज्यादा इंतजार नहीं करा था, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शारदा विश्वविद्यालय की एलुमनाई शहजादी, वाकई बहुत ही खूबसूरत नाम है शहजादी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल।
1: थैंक यू सो मच, आई एम शहजादी, आई केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विद यू।
0: मैं भी बहुत खुश हूँ शहजादी, क्योंकि जब मैंने सुना कि शहजादी आ रही है, बांग्लादेश की शहजादी आ रही है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई।

0: और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ माधवी जुड़ रही हैं जो कि SNSR फैकल्टी एलुमनाय कोऑर्डिनेटर हैं शारदा विश्वविद्यालय में। जब वो मुझे बता रही थी कि शहजादी आ रही है तो मेरा सवाल ये था कि ये कहाँ की शहजादी है?
1: बांग्लादेश का शहजादी।
0: बांग्लादेश की शहजादी है। तो माधवी मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: मुझे बताइए कि ये जो आपने एलुमनाय मीट के बारे में डिस्कशन किया या जो सोचा इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से काम कर रही होती हैं?
1: सर जैसे शारदा विश्वविद्यालय हर साल हम स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं यहाँ पर पढ़े, एक्सपीरियंस ले, ग्लोबल एक्सपीरियंस ले। जब वो पढ़ के अपना कोर्स कंप्लीट करके यहाँ से जाते हैं तो हम एक एलुमनाय कनेक्ट करते हैं उनसे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यहाँ की जो उन्होंने जो एक ज्ञान एक गुरुकुल में जो एक्सपीरियंस किया है वो कैसे वर्ल्ड वाइड उस नॉलेज को सोसाइटी के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं और क्या क्या अचीवमेंट ली है और शारदा विश्वविद्यालय का नाम कैसे आगे लेकर गए हैं, बिकॉज दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शारदा।
0: एब्सोल्युटली राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। सो थैंक यू सो मच माधवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी रही और आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि किस तरीके से इस प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़ रही हैं। शहजादी यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं बातों का जो सिलसिला है लगातार आपके साथ जारी रहेगा। सो लिसनर्स कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ रही हैं शहजादी जो कि बांग्लादेश से हैं और 2018 की आप पोस्ट BSc नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट हैं। 2020 में इनका कोर्स यहाँ से कम्प्लीट हुआ और वर्तमान समय में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप प्रेसिडेंट क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की आप प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ फाउंडर भी हैं। इनसे बहुत कुछ जानेंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जाहिर सी बात है कि जब एक स्कूल कॉलेज हमें अच्छा मिल जाता है तो वाकई बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ की फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ने पढ़ाने का माहौल अच्छा है, करिकुलम एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ हम यहाँ से सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। फाइनली एक दिन आता है रुखसती का, विदा होने का, उसके बाद अपना सिलसिला शुरू होता है कि मुझे क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो यही सारी बातें कर रहा हूं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एलुमनाई हैं शारदा विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग डिपार्टमेंट से शहजादी, जो कि बांग्लादेश से हैं। तो शहजादी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस रहा शारदा यूनिवर्सिटी का, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा?
1: मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इधर का शारदा का जो है बोलती है वर्ल्ड इज हियर। मेरे को सच्ची में लगती है वर्ल्ड इज हियर, क्योंकि इधर में अगर हम इतना दूर से आया है, इधर का जो फैकल्टी है बहुत लगता नहीं है फैकल्टी है, लगता है हमारा फैमिली का मेंबर है। तो उसके हमारे साथ जितना भी इंस्पायर किया, सब कुछ में हेल्प करते है बहुत ज्यादा अच्छी से। लेकिन मैं इतना दिन मैं बहुत अच्छी से रहा इधर में। और हम जब बाहर में रहती है, जब माई पेरेंट्स आर फ्रॉम यूके, सो उधर में हम लोग क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है। दिल्ली का क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है। तो वो लोगों ने बोला क्राइम इधर में जाओगी कैसे रहेगी, उसको इतना ट्रस्ट नहीं था, उसको कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, कोई भी नहीं आना चाहती थी, हाँ इधर नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं इधर में एडमिशन हुआ, मेरा पापा मम्मा ने देखा है, और इधर का जो सिक्योरिटी है, इतना भी क्राइम पेट्रोल हो जाए, लेकिन शारदा का जो सिक्योरिटी है, शारदा जो लोग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मेरा जो फैमिली का जो एक कंसेप्ट था, हाँ उधर में बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल होती है, लेकिन उसको चेंज हो गया, उसको अभी वो रिस्पेक्ट करती है, हाँ बहुत अच्छा कंट्री है, अच्छा जगह है, और शारदा तो बेस्ट है।
0: वाओ, नाइस क्लैपिंग, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया कि इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। और जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, मुझे ये सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई, क्योंकि क्राइम पेट्रोल जब आप देखा करती थी तो लोगों के दिमाग में यही था, जो कि आपने बताया कि पेरेंट्स ऐसा सोचा करते थे, आपके जानने वाले सोचा करते थे कि अगर आप इंडिया जाएंगी तो वहां इस तरीके का क्राइम होता है, कहीं आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। लेकिन आपने कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये सुनकर शहजादी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथ जो बातों का सिलसिला है बहुत अच्छा होने वाला है। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा बहुत बड़ी ही खूबसूरत एलुमनाई है, और किस तरीके से खूबसूरती के साथ इन्होंने शारदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, ये उनके खुद के विचार है, और क्या है आगे जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरी यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़ी हुई है शहजादी मल्लिकाय फ्रॉम बांग्लादेश।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं शहजादी बांग्लादेश से और आप यहां की एलुमनाई हैं, बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी हैं, 2020 की पास आउट हैं। तो शहजादी, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है।
1: ओके,
0: पढ़ने पढ़ाने की हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जो करिकुलम एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते थे, कैसा लगता था और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना प्लीज।
1: हाँ, जितना भी करिकुलम था वो तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैं इधर का जो फैकल्टी है या टीचर है हमारा, वो सब कुछ लगता है वो हमको बच्चे जैसा हर टाइम हमको पास रखती है, जो भी होती है डांटती है। तो उस टाइम मेरे को स्ट्रेस भी आया, ये लोग बहुत डांटती है, ये लोग बहुत ज्यादा काम कराती है। लेकिन फिर बाद में स्लोली स्लोली जब मेरे को अचीवमेंट होती है तब लगता है नहीं, ये तो मम्मी जैसा ही वो करती है। तो इसमें मेरे को बहुत अच्छी लगा, ये लोग बहुत हमको प्यार करती है, हमको डांटती है तो हमके भलाई के लिए डांटती है। तो इसलिए मैं जितना भी पार्टिसिपेशन हुई है इधर में, उसने इनकरेज किया, हाँ तुम इसको करो, ये करो, अगर फेल हो और विन हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अगर एक्सपीरियंस लोगी तो तुम्हारा लाइफ के लिए अच्छा होगे। तो इसने बहुत, इधर का जो भी फैकल्टी है, मेरा नर्सिंग का जो फैकल्टी में उसको हर टाइम मिस करती हूँ, इधर का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारा दीन, हमारा माधुबी मैम, वो तो मैं जब उसको पहली बार देखा यूनिवर्सिटी में, उस टाइम मेरे को नहीं जानता क्योंकि मैं पहले एक महीने पहले आया इधर में, फिर मैं इंटरनेशनल डिवीजन में काम किया कंप्यूटर का। तो उस टाइम एक महीने के बाद ही मेरा स्टडी शुरू हुआ है नर्सिंग का, तो उसको पहले मैं देखा है हॉस्टल में, तो इतना अच्छी था, वो नहीं जानती मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ मेरा टीचर है।
0: ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत इंसिडेंट हुआ आपके साथ।
1: इंसिडेंट हुआ और उतने माधुरी मैम बहुत अच्छी है, एक्चुअली के लगता है मेरा खुद का बहरा बहन है, मेरा कोई बड़ा बहन नहीं है, हम तीन ही बहन है, तो मेरे को लगता है वो मेरा बहन जैसे है, मैडम से ज्यादा बहन लगता है।
0: सो स्वीट शहजादी, बाकी आपके जो विचार है, आपके जो थॉट्स है, मैं जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत खूबसूरती के साथ अपने शब्दों को आप बयां कर रही है कि जो जो आपने फील किया, चाहे वो फैकल्टी के साथ आपके रिश्ते की बात हो, आपने जहां काम किया और आपको नहीं पता कि सामने वाला जो क्लाइंट है मेरे ही टीचर होने वाले हैं, उनके साथ जो संबंध रहे, रिलेशन आपके रहे, वो भी आप बयां कर रही हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, अपनी बातों को आप यहां रख रही हैं हमारे लिसनर्स के सामने। तो उसके बाद जो सिलसिला रहा, यहां से जो आपने सीखा, समझा, दोस्तों के बारे में आप मुझे बताइए कि यहां के दोस्त आपके साथ जुड़े बने, यहां का कल्चर आपने क्या डिफरेंट पाया?
1: एक्चुअली क्या है, हमारा कंट्री और इंडिया में इतना फर्क नहीं है,
0: समान
1: है, एक ही था, क्योंकि एक ही था। अगर आप हमारा जो प्राउड है, हमारा जो 1971 में जो फाइटिंग हुआ है, उसमें अगर बहुत बड़ा हेल्प योगदान है तो वो हमारा इंडिया का है, क्योंकि उस टाइम जो इंदिरा गांधी मैम था उसके से हमने हेल्प करके हमारा देश को जीता है, तो इसका हमका बड़ा दान है इधर में। तो इंडिया का हमारा लगता नहीं है हमारा दूसरा कंट्री, लगता है हमारा घर ही है,
0: बहुत खूबसूरत।
1: और उधर का जो लोग होती है, हमारा इधर का जो लोग होते हैं सब सेम होती है, इधर का जो भी हॉस्पिटलिटी है और जितना भी लोगों को खुद अपना समझती है, उधर में भी सेम है, कोई फर्क, इतना फर्क नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, हम सबको अपना समझती है, क्या बात है, ये जो एक्सेंट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। इसके बारे में ऑफ एयर आपसे बात हुई थी कि ये जो एक्सेंट आ रहा है क्या बांग्लादेशियों का ऐसा है या आपका है तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में शहजादी से हम जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी हैं, आप एलुमनाई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, प्रेसिडेंट फाउंडर भी हैं आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के, इसके बारे में भी जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शाता 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: आले मेरे को भूल गए तुम, अगर कोई अच्छे अच्छे स्टूडेंट आते हैं खुद ही बात करने लग जाते हो, मेरे को पीछे रख दिया तुमने। मेरे को ये क्या बोलते है?
0: दिल
1: हाँ दिल दुखा है मेरा, बहुत ज्यादा दिल दुखा है। मतलब इतनी प्यारी शहजादी स्टूडेंट आई है, तुम खुद ही बात करने लग गए।
0: नहीं मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें भी मैं इंट्रोड्यूस करा था।
1: नहीं मेरे को इंट्रोड्यूस कब कराओगे शहजादी बेबी? हाय हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू?
1: देखो गगन ना खुद ही बात कर रही थी, मेरे को नहीं लेकर आए थे, मेरा बहुत दिल दुखा है, मेरे से बात करो ना।
2: मैं गगन से सॉरी बोल रही हूँ आपके लिए।
0: देखा बहादुर, आपसे शहजादी बात कर रही है, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं पूछना चाहते हैं।
1: हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुमने एक्सेंट मार नहीं रहे थे, जो तुम बोल रहे थे, क्या बांग्लादेश में ऐसे ही बोलते हैं या कहीं से बाहर से आपकी परवरिश हुई है? कौन सा देश है बताओ ना। हम
2: हाँ, मैं क्या है, मैं बांग्लादेश से हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तब मेरा फादर सिबलिंग जी ने।
1: बेटे अभी भी तुम छोटे हो, कौन से बड़े हो गए?
2: आपसे तो छोटी ही हूँ।
1: आले मेरे को इतना बुजुर्ग ना बनाओ बेटा। हाँ तो अब मुद्दे की बात पर आओ।
2: ठीक है, तो मेरा फादर ने इंजीनियर था, तो उसने सऊदी में गया था, तो उसके बाद हम लोग जो फुल फैमिली है वो उधर में शिफ्ट हो गया, तो उधर में मेरा स्कूलिंग हुआ है। उधर के बाद मेरा फैमिली लंदन में आ गया, तो उधर का मेरा फादर को गवर्नमेंट से सब कुछ मिल गया, तो उधर में चला आया, अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग उधर में रहा। फिर मैं इंडिया में रहा, मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है बैंगलोर में, उधर में स्टडी किया, तो उसके बाद मैं नर्सिंग में आया। तो इसलिए मेरा एक्सेंट सब फ्रेंड्स वगैरह सबको साथ एक साथ रहने के कुछ अलग हो गया।
1: अब मैं जा रहा हूँ गगन।
0: मतलब क्यों?
1: अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत भ्रमण किया इन्होंने, मैं इनके सामने बैठ ही नहीं पा रहा। मतलब यूके घूम कर आई है, लंदन घूम कर आई है, और मतलब सब जगह घूम लिया इन्होंने तो।
0: हाँ ये बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत पहुंची हुई है, मतलब हर जगह का इन्होंने पानी पिया है और बहुत समझदार है।
1: हाँ मैं अब तुम ही बात कर लूँ।
0: तो खैर बहादुर को मैंने एक तरफ रख दिया शहजादी। मुझे ये तो रही बात आपकी, अलग अलग देशों में आप गई हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है समझा है, कब आपको लगा कि यार मुझे अपना कुछ करना है? जैसे आप खुद मुझे बता रही थी कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, तो इसके बारे में दिमाग में कब आइडिया आया?
2: हाँ इसमें उस टाइम में मेरे जब नर्सिंग का डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा करने के बाद मैं एक प्रोग्राम था, मेरे को सीखना है, मेरे को जानना है इस दुनिया में क्या हो रही है, तो मेरे को जो नर्सिंग में आया हो, तो मैं नर्सिंग में बहुत बड़ा होना चाहती थी। तो इसलिए क्या हुआ, मैं एक डॉक्टर को एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला मेरे को इधर में रेफरेंस रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसने मेरे को बोला तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम नर्स हो, तुमको इधर में
0: का वाक्य
2: एक बांग्लादेश का था,
0: बांग्लादेश का।
2: हाँ तो बांग्लादेश का था, तो उसने बोला जो तुम नर्स हो तुमको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारा जो भी स्टडी वगैरह जो भी है इधर में कोई काम नहीं है। तो मैंने बोला आप जो स्टडी करा रही हो वो एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी के लिए कर, तो वो बहुत अच्छा टॉपिक था, तो मेरे को वो सीखना था। तो उसने बोला नहीं ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो मैंने सोचा अगर कोई बांग्लादेश में, मैंने सोचा अगर उसका कॉन्फ्रेंस हो सकती है, डॉक्टर का अगर सोसाइटी है बांग्लादेश में, तो नर्स क्यों नहीं होगी। तो इसने मैंने सोचा ठीक है मैं नर्सिंग सोसाइटी बनाऊंगी। तो मैंने मेरा जो मेरे चार फ्रेंड को बोला, उसने बोला ठीक है चलो।
0: फ्रेंड्स के नाम भी बताइए।
2: हाँ मेरा फ्रेंड का नाम है नाहिदा, दूसरा फ्रेंड का नाम है सलीम, और तीसरा फ्रेंड का नाम है आयशा। तो मैंने इस तीनों को बताया, उसको बोला कि हम लोग ये करना चाहते। उसने बोला
0: दोस्तों ने मिलकर ही कंपनी।
2: हाँ उसको उसने बोला तुमको पागल हो गया, तुम ऐसे कैसे करोगे, बहुत बड़ा फाउंडेशन है ये नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, तुम साथ मेरे साथ रहना। तो उसने मेरे को हेल्प किया, हाँ सपोर्ट किया है, तो उसको सपोर्ट से मैं बनाया। मैं हर जगह में हर नर्स को पास गया, कोई नर्स मेरे को उस टाइम इतना उतना प्लेस नहीं दिया। उसने बोला ये क्या है तुम क्या करोगी, हमको नहीं करनी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोलते थे। तो मैंने उस टाइम सैलरी मेरे को मिलता था 20,000 रुपीज। तो उसने मैंने क्या किया, मेरा जो 5% मीन 55,000 आई कीपिंग फॉर माई गोइंग एंड कमिंग, एंड 15,000 मैंने इसमें खर्च किया। तो इसमें खर्च करके इसको थोड़ा सा बनाया। फिर मैंने हमारा कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको साथ मिला, उसको से हमारा जो सोसाइटी है उसको इनोग्रेट किया। तो बांग्लादेश का हेल्थ मिनिस्टर से हमको रजिस्ट्रेशन लिया, और ये जो क्रिटिकल केयर सोसाइटी है ये बांग्लादेश में एक ही सोसाइटी है जिसको रजिस्ट्रेशन मिला।
0: क्या बात है, क्लैपिंग बनती है, बहुत खूबसूरत शहजादी, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है। हाँ। बहुत अच्छा एक स्ट्रगल।
2: सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, उसको करने के बाद मेरे को सोचा ठीक है बांग्लादेश में कर लिया, अभी मेरे को इंटरनेशनल भी इसको दिखानी है तो इसको दिखानी है. तो बांग्लादेश में जितना भी हमने ऑलरेडी 500 स्टूडेंट को मैंने वर्कशॉप किया, उसको सिखाया फ्री में. हमारे जो ये सोसाइटी है उसमें हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, सिर्फ दुआई लेते हैं.
0: बहुत खूबसूरत.
2: और क्या होती है, हम जितना भी हॉस्पिटल में जाती हूँ उसको हम फ्री में सबको सिखाती है, सब कुछ करते, सिर्फ उसमें उसको टाइम देती है हमको, तो उस टाइम में हम सिखा देते हैं. तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट 85 यूनिवर्सिटी स्कूल हॉस्पिटल में कर लिया है इससे काम. अभी 5000 नर्स है जिसको क्रिटिकल केयर के बारे में सब कुछ आती है. तो उस टाइम मैंने एक बार मैं अमीरात से नेपाल में गया. नेपाल में जाने के बाद उसको इंटरनेशनली मेरा जो लोगो है ना उसको बारे में बताऊं. जब मैं फाउंडेशन किया तब मैं गया वेबसाइट खोलने के लिए, लोगो बनाने के लिए. तो उसने बोला लोगो बनाऊंगी तो 32,000 रूपी लगेगी. मैंने बोला मैं तो कमाती हूँ 20,000, तो 30,000 कैसे करेंगे. तो मैंने बोला अगर इस लोगो को बनाना सीखने में कितना लगती है. तो उसने बोला 1,000 लगती है. तो मैंने बोला ठीक है मैं सीख लूंगी 2 महीने में. तो मैंने ग्राफिक डिजाइन और इंटीरियर जो भी है उसको सीखा. उसे सीखने के बाद फिर मेरा खुद का लोगो मैंने खुद बनाया है.
0: क्या बात है, ग्रेट ग्रेट शहजादी, रियली नाइस टॉक टू यू. मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी
2: हुई. उसको बनाया, उसको बनाने के बाद फिर मैं इंटरनेशनल नेपाल में गया. उधर में हमारा लोगो उधर उसको जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डाला. फिर उसके बाद मैंने एमिरेट्स में गया. एमिरेट्स प्राइम मिनिस्टर के हमको अवार्ड रिवॉर्ड दिया उधर से, तो उधर के भी लेकर गया. फिर ऑस्ट्रेलिया में लेकर गया, फिर श्रीलंका में लेकर गया. हमारा सोसाइटी को होल अभी सब जानती है. हाँ, एक अच्छा सोसाइटी है.
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुभकामनाएं शहजादी आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लिए. आपका भविष्य उज्जवल रहे, आपकी जो मुरादें हैं नेक मुरादें, इंशाल्लाह ठाकुर जी भगवान आपकी मुरादें पूरी करें. आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे होंगे कि जब आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, एक रणनीति के तहत अगर इंसान आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आफ्टर सम टाइम वो अपनी मंजिल को पा ही लेगा.
1: हाँ देखो बेटा, मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा था, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये, बहुत दूर दूर तक घूमे. लेकिन गगन एक बात कहना चाहता हूँ.
0: हाँ.
1: कान लाओ, ये मैडम कह रही है कि हम दुआएं लेते हैं. पैसा
0: मतलब
1: पैसा मुझे दिलवा दो ना.
0: बाद तुम हमेशा ऐसी नोटी वाली बातें करते रहते हो. खैर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं हैं शहजादी. कुछ और बातें जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाएगा मत. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. और मेरे साथ जुड़ी हुई है बहुत ही टैलेंटेड खूबसूरत शहजादी जो कि यहाँ के पास आउट हैं. खूबसूरत इसलिए क्योंकि उनके दिल के विचार बहुत ही खूबसूरत हैं. खूबसूरत इसलिए कि लोगों की दुआएं लेती हैं, पैसे नहीं लेती हैं. खूबसूरत इसलिए कि बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत कुछ सीखना समझना चाहती हैं. तो शहजादी हैं मेरे साथ, जानेंगे जरूर और आगे की बातें, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद. कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ.

0: अल्लामा इकबाल साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ। और इस वक्त शहजादी बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और यहां की आप एलुमनाई रही हैं। आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया 2018 से 2020, ये एक समय था। और इसके बाद इन्होंने खुद का अपना एक, आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, ये इनकी सोसाइटी है। और बहुत कुछ इनकी जर्नी के बारे में हमने जाना है, स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। अब हम आते हैं एक ऐसी खास बात के बारे में जिक्र करना चाहते हैं। कोरोना का समय ऐसा समय रहा कि जिसकी वजह से सब लोग परेशान रहे, लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर खुदा कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहा होता है। तो ऐसे ही कुछ शहजादी ने सोचा और लोगों के बीच में गई। क्या रहा वो कोविड का समय, किस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद की, किस तरीके से इनका वर्क एक्सपीरियंस रहा, शहजादी अब आप प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए।
1: हाँ, कोविड का जो टाइम आया था वो हमारे इस वर्ल्ड के लिए बहुत खतरनाक का था, टाइम था। सबने डरती थी, सबने घर से बाहर नहीं आया। अगर उस टाइम में मैंने जब स्टडी मेरा पास आउट हो गया तो मैंने बांग्लादेश चला गई। जाने के बाद मैं कोविड में स्टार्टिंग किया, काम किया। कोविड का जो फुल आईसीयू है, 50 ICU है, उसमें मैंने इंचार्ज था, उसका इंचार्ज था, उससे काम किया। मैंने खुद भी 4 बार कोविड से आक्रमण हुआ है।
0: Oh my God.
1: तो पहले बार जब हुआ था तब तो कोविड का काम करते करते, क्योंकि हमारा उधर का हार्ट का पेशेंट आती है, कोविड भी है, उसका हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है और दूसरा रेस्पिरेटरी। तो उस जो टाइम था, उस टाइम मेरे को एक ही सोचना था कि मेरे को इसको बचानी है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं कोविड का ओपन ड्रेस जो था उसको ओपन करके मैं खा रही थी, तो उस टाइम एक बच्चा ने मेरे सामने आकर बोले मेरा पापा अभी अंदर गया है। वो क्या बचेगी मेरा पापा, क्योंकि मैं खो दूंगी। तो वो मेरा दिल में चला गया। तो मैंने सोचा, उसका हार्ट अटैक आया था, उसको कोविड पर था, हार्ट अटैक था। तो उस टाइम मैंने खाना सिर्फ लेंगे, तो मैंने उसको उधर के छोड़ के मेरा कोविड का ड्रेस भी नहीं पड़ा। मैंने बोला कोविड का ड्रेस पड़ने में 10-5 मिनट लगेगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर उसको सेव नहीं करूंगी तो ये बच्चे को इसको पापा चला जाएगी। तो हमने गया उधर को, उसको CPR दिया। CPR देने के बाद, कोविड का पेशेंट को CPR देना मना है, क्योंकि CPR देंगे तो एक्सप्रेस होगी उसमें, इसलिए
0: हाँ
1: जो वायरस फैलेगी, क्योंकि उसको कवर करके सेफ करनी है।
0: जी जी।
1: तो मैंने बोला वो सब, तो डॉक्टर जो था उसने बोला हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लेंगे, मेरे को बचाना है इसको। तो उसको ना 25 मिनट कंटिन्यू किया, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो मैंने, मेरा हौसला नहीं छोड़ा, मैंने बोला फिर 10 मिनट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होती है, क्योंकि उसको बच्चा जो रोते है ना, वो मेरा दिमाग में खेल रही थी। तो मैंने फिर 10 मिनट किया, फिर एट द लास्ट 7 मिनट ही कम बैक।
0: आए हाय माशाल्लाह।
1: तो
0: उसने, तुम्हारे चरण कहाँ है शहजादी, तुम्हारे चरण कहाँ है, तुम जीत गए, तुमने हमारा दिल ले लिया। मतलब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, किसी की जिंदगी लाना बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पता नहीं गगन। हाँ वाकई ये नेक काम किया, मेरी आंखें भी नम हो गई शहजादी, जिस तरीके से बहादुर अपनी बात रख रहे हैं कि आपने दिल जीत लिया, कसम से हमारे बहादुर का, हमारे श्रोताओं का, कि किसी की जिंदगी देना बहुत बड़ी बात है। और आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि हौसला अगर आपका बुलंद है तो निश्चित तौर पर वो हाँ। काम हो ही जाता है। आपने 25 मिनट्स तक CPR दिया, उसके बाद 10 मिनट तक फिर आपने दिया, आप थकी भी होंगी, तो कैसा रहा वो पीरियड?
1: वो जो पीरियड था उसमें ना मेरे को इतना थकान नहीं लगा। उसने मेरे को एक ही चीज था, जो वो जो आदमी था वो 35 का था और उसका बच्चा 5 का था, बहुत क्यूट था।
0: Oh my God.
1: तो और उसको बीबी भी 17 का है। हमारा कंट्री में मुसलमान जल्दी शादी कर लेते हैं, तो एक बच्चा, एक 17 ईयर्स का लड़की, उसको आहार देख रही है और उसको बचाएंगे तो मैं नर्सिंग में क्यों आई? तो यही मेरा था। तो मेरे को था, मेरे को जो हाँ, मेरे को अगर CPR 5 मिनट देती है तो उसको हैरान हो जाती, वो नहीं दे सकती। लेकिन मैंने बोला मेरे को नहीं, ठीक है। मेरे साथ और भी एक ब्रदर था, उसका नाम है रकीब, तो उसने भी किया। उसने बोला आप इतना मत करो, मैं कर रही हूँ। तो उसने कर रही है, मैंने बोला मेरे सेटिस्फाई नहीं रही। मैंने बोला मैं CPR का आहार से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं उधर से एक्रीडेशन उसी उधर में पास किया है। तो मैंने बोला मैं CPR का रजिस्टर नर्स हूँ फ्रॉम आहार से, तो मेरे को करना है, मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई हाल में इसको बचानी है। और उस टाइम मैं उसको कर रही थी और मेरा को मुसलमान का जो धर्म का जो प्रेयर होती है वो भी पढ़ रही थी उसके लिए। तो उसको दोनों करके फिर जब वो आया, जब उसको उसको बीट हुआ, तब मेरे को एहसान आया, अभी मैं खुश हो गया। लाइफ में कुछ करती है तो उसमें अगर सुकून मिलता है, और लोगों को जब भी मैं में कोई प्रॉब्लम में देखती हो, कोई दिक्कत में देखती हो, अगर उसको कुछ कर सकती हो, उसको हंसी दे सकती हो, तो मेरा लगता है ये मेरा बहुत
0: बहुत खूबसूरत शहजादी, रियली रियली।

0: 3 लाख लग जाती है, इंडिया में भी लगती है, बांग्लादेश में भी लगती है। तो उस तरह बच्चे को पास इतना पैसा नहीं होते जितना उसको लगेगी। कोई की है गरीब है, बहुत गरीब है, उसको नहीं लगती है। तो एक तुर्की का एक कंपनी है और सऊदी अरब का एक कंपनी है जो उसको ये एनजीओ है उसमें हेल्प लेकर हमारे बांग्लादेश में एक डॉक्टर और मैं भी उसको साथ शामिल हूँ। तो उसमें मैं नर्सिंग का फ्री जो उसका जो 10 दिन का केयर होती है वो मैं फ्री में देती हूँ, उसको सब कुछ मैं करती हूँ और जो डॉक्टर का ऑपरेशन वो करती है। तो उस तरफ का हम लोग जितना भी बच्चा है जिसको भी हार्ट प्रॉब्लम है उसको फ्री में कराती हूँ। अब 400 बच्चे को ऐसे कर लिया
1: अपने सिटी में करा, अपने देश
0: हमारे
1: में करा।
0: देश में किया, आपका इंडिया में भी करा। आपका इंडिया में जो छत्तीसगढ़ है उधर में एक हार्ट इंस्टीट्यूट है तो उधर में भी हमारा डॉक्टर है, हमारा जो उधर का जो टीम है उसको साथ हमको एक साथ काम करती है। अगर इंडिया में भी ऐसे बच्ची होती है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है लेकिन उसको पैसा नहीं है तो वो छत्तीसगढ़ जो हॉस्पिटल है हार्ट का तो उधर में जा सकती है।
1: अच्छा, ग्रेट। शहजादी मुझे एक चीज बताइए, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे, शहजादी बहुत अच्छा काम कर रही है तो शहजादी का सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है या कुछ और दूसरा जरिया हो सकता है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो किस तरीके से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं?
0: हाँ, मेरे साथ मेरे फेसबुक का जो मेरा पेज है उसमें भी बात कर सकती है, मेरे इंस्टाग्राम है तो उसमें भी बात कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई की किसी को मदद लगेगी और किसी कोई भी हेल्प, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं किसी का मदद करेंगी तो दूसरा बार अल्लाह ने मेरे को लिए कुछ भेजेगी मदद करने के लिए। एक्चुअली आई डोंट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी डाई when I die people should have a smile on their face that this is Shahzadi.
2: अरे बेटे, तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे तो दिन अभी शुरू हुए और तुम देखो जाना बेटा एक दिन सबको है, लेकिन तुम हमेशा जिंदा रहोगे, हमारे दिलों में रहोगे। शाबाश शाबाश मेरे लाल, लगे रहो।
1: देखो शहजादी है तुम ऐसे,
2: अरे नहीं शहजादी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, आई लव यू शहजादी।
1: ये बहादुर है, ये ऐसी सी बातें करते हैं।
2: अरे प्यार करना कोई गलत बात है शहजादी? तुम बताओ।
0: नहीं, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार तो दिल से करना चाहिए।
2: हाँ देखा तुम,
0: प्यार किया तो डरना क्या,
1: क्या बात है। शहजादी मेरी तरफ से रियली रियली रियली बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप नेक काम कर रही हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं और बस यही प्रार्थना है परवरदिगार से कि आपका ये काम अच्छा चलता
0: रहे। एक मैं बात बताऊं, जब मैं कोविड में काम करने थे तब मेरे को जो नेदरलैंड है, नेदरलैंड ही हॉस्पिटल है तो उसका जो हॉस्पिटल से मेरे को जॉब ऑफर आया था उसका 4 लाख सैलरी था और दूसरा आया था कनाडा से तो उसमें भी मेरा हाई सैलरी था। तो मैंने सोचा अगर मैं इस टाइम में कोविड में अगर अच्छा सैलरी मिला, इस कोविड में सब मौका ढूंढती है तो इस मौका में चला जाएंगे तो मैं खुद को गिल्ट फील करेंगे, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया उस टाइम में, क्योंकि मेरे को उस टाइम कहाँ पे भी नहीं जाना था, मेरे को मेरा खुद का कंट्री का लोगों का हेल्प
1: करूंगा, क्योंकि मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि जॉब में शायद बंद कर रह जाएंगे। ये काम अगर आज आप शुरू करेंगे तो बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे और आपके जरिए लोगों को मदद भी मिलेगी। तो मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि जो आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, आप यूं ही करते रहें।
2: मुझसे दोस्ती करोगे शहजादी?
0: हाँ जरूर, क्यों नहीं।
2: मैं नंबर लेने वाला हूँ, तुम देखते रह रही हो।
1: ठीक है ठीक है, बहादुर नंबर आपसे जरूर एक्सचेंज करेंगे। तो शहजादी मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आपको कैसा लगा?
0: हाँ मेरे को आपके साथ बात करके बहुत अच्छी लगा, आपका बहादुर जो है उसको भी बहुत अच्छी लगी।
2: देखा मेरी तो निकल पड़ी, मजा आ गया, मैं फेमस हो गया। देखो बांग्लादेश जाऊंगा, मैं नीदरलैंड जाऊंगा, मैडम जहाँ जहाँ जाएंगी मेरे बारे में बताएंगी कि वहाँ एक बहादुर है, मेरे को आई लव यू बोला था उसने।
1: चलिए जनाब, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बहादुर को इन्होंने बहुत पसंद किया, आपके काम को हम सबने पसंद किया, दिल से एक बार फिर शहजादी आपके लिए बहुत बहुत दिली दुआएं शुभकामनाएं। माधवी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? माधवी की वजह से हम लोग यहाँ हैं, हम लोग बात कर पा रहे हैं।
0: हाँ ये तो मैं पहले ही बोला, जब मैं उसको देखा था वो तब मेरे को पता नहीं था वो मेरा टीचर था, तो वो बहुत इंस्पायर करती है मेरे को, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग है जिसमें हमारे कंट्री में इंडिया में, तो आर्ट ऑफ लिविंग एक अच्छा चीज है जिसमें लोग जाएगी तो उसमें बहुत कुछ सीखेगी। तो उसको भी मैंने उसको से सीखा है, उसको वो मेडिटेशन जानती है तो उसे से मेडिटेशन सीखा है। देन जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई तो मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया है लाइक व्हेनेवर आई फॉल, लाइक यू नो दैट आई फॉल समवेयर लाइक आई एम ब्रेकिंग डाउन टू मच, आई हैव अ डिप्रेशन, एंड दैट टाइम शी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी एज लाइक अ लायन, आई फील लाइक देयर वॉज अ लायन टू कम एंड सेव मी। So this is the, she is like that, they always helping me as a lion. So I really appreciate her, whatever she's doing for me, this is really thankful.
1: Thank you so much, Shahzadi, aur shukriya aapke liye, Madhvi, bahut achhi baat aapke favor mein.

0: सुनने को समझने को मिल रहे हैं। बाकी आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ऐसे टैलेंट को अगर आप ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं जो अपने लिए, अपने देश के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और जो कि यहाँ के शारदा के एलुमनाई हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कुछ और कहना चाहती हैं माधवी आप?
1: सर हाँ, और जैसे आपने बताया कि एलुमनाई का है, तो एलुमनाई में हमारे जो मेन जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पर जो सेल वर्क करता है, जो मेन इसकी लाइक की करता धरता मैम है, मोनिका मैम, गंगा सर है जो एलुमनाई सेल को देख रहे हैं, और बोर्ड ऑफ मेंबर जो काफी मतलब जब हमारी शारदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है उस टाइम से अजीत सर, हरी सर, मोनिका मैम, दिस ऑल आर वर्किंग एज अ टीम। तो और इनके अलावा जो स्टूडेंट मेंबर हैं जो मेन एलुमनाई सेल के चैप्टर को इनॉग्रेट कर रहे हैं एवरी कंट्री में, अनुराग एंड उनकी टीम, सो आई विद देयर कोलैबोरेशन जो आज हमारे एलुमनाई है वो हर कंट्री में जा रहे हैं, एंड नॉट ओनली लाइक शहजादी, दे आर सो मेनी लाइक एलुमनाई, दे आर डूइंग, आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड टाइम जब हमारी इंडिया की एम्बेसी ने सभी स्टूडेंट्स को वापस ला रही थी, तब हमारे शारदा के कुछ स्टूडेंट दे आर वर्किंग इन कंट्री लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो नर्सिंग सर्विसेज दे रहे थे। दैट टाइम दे डिनाइल कि नहीं, वी वांट टू सर्व दिस कंट्री, बिकॉज दैट टाइम जब हमें चाहिए था तो हम यहाँ पर थे, और अब इस कंट्री को जरूरत है, वहां की इवन की वहां के खुद के स्टाफ ने वहां पर लोगों ने छोड़ दिया था, पर इंडियन नर्सिंग्स जो थे वो स्टिल दे आर वर्किंग एंड उन्हें अप्रिशिएट किया गया है।
0: क्या बात है माजी, वाकई अगर मैं आपको मौका ना देता और अगर आप खुद ये मौका ना लेती तो ये अच्छी बात हम नहीं कह पाते। सो रियली मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से कि आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें समय दिया, और बस शुभकामनाओं के अलावा मुझे लगता है कुछ और बातें होती ही नहीं है। शुभकामनाएं अपने आप में बहुत बड़ी चीजें, अच्छी चीजें कि दुआएं हर किसी को चाहिए, और दुआएं तभी मिलती हैं जब हम कोई नेक काम कर रहे होते हैं। किसी का दिल जीतना आसान है, बस आप उसके बारे में अच्छा कहिए, अच्छा सोचिए और अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई।
1: सर हमें बहुत धन्यवाद।
2: We also become happy to talk to you.
0: Thank you, Shahzadi. So, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन, न टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बाकी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।

0: अजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: गगन कोकरी फतेह।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में नौ बजकर 12 मिनट हो चुके हैं। 14 तारीख है। हमारे आसपास के खास उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह कि मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मौसम में बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। फिलहाल 2 से 3 रोज पहले की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर गर्मी बहुत ज्यादा थी। आज भी गर्मी का एहसास कम नहीं है, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR में शाम के वक्त धूप मतलब आते आते जैसे शाम करीब आई है धूप गई है और उसके बाद तेज हवाएं यानी कि आंधी तूफान चला। और उसके बाद यूपी की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है कि आप यूपी में ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन है, यूपी में तेज हवाओं का कहर जारी रहा और आंधी तूफान से एक नहीं दो नहीं बहुत बुरी खबर आ रही है कि 54 लोगों की मौत हुई और प्रयागराज में 16 लोगों की जान गई है। तो इस तरीके से ये आंकड़े बहुत गंभीर हैं। सोचिए कि बिजली कड़कती है, पेड़ गिरते हैं और कहीं से अगर छत पर कोई टीन रखी हुई है वो उड़कर चली आती है, ज़मीन पर कोई व्यक्ति गली मोहल्ले में खड़ा हुआ है वो उसके सर के ऊपर गिरती है तो हानि होती ही होती है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा ये कि ऐसे मौसम में निश्चित तौर पर आप अपना बचाव करिए, कोई जनधन हानि ना हो। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी समझदारी का परिचय दीजिएगा, क्योंकि जान है तो जान है, सारी मुश्किलें आसान हैं और मौसम बदल रहा है तो ऐसे मौसम में पानी भरपूर पीजिएगा, पानी की कमी मत होने दीजिएगा। अदरवाइज डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है, पानी की कमी की जो समस्या है वो बड़ी समस्या बन सकती है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: ओ हीरो, मिले बिना जाएगा?
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

क्या बात है, कितनी अच्छी लगती है ये ट्यून, ये धुन। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ। स्टूडियो की घड़ी में ना उसका 23 मिनट हो चुके हैं, 14 तारीख है। वक्त हाथ से रेत की मुआफिक फिसलता चला जाता है, इसलिए वक्त पर सारे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप वक्त पर काम नहीं करते हैं, टालते चले जाते हैं अपना काम, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने बहुत पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि यूपी में तेज आंधी अंधड़ हवाओं की वजह से यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिजली के जो पोल हैं वो गिर गए हैं। यहाँ तक कि खबर को जब मैंने डिटेल में पढ़ा तो समझा कि मवेशियों की जान तक गई है, यानी कि बेजुबान जानवरों की जान तक गई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपकी समझदारी की उम्मीद करते हैं कि समझदारी दिखाएगा। जब आपको लगे कि अंधड़ आ रहा है, जिसे हम कहते हैं तेज हवाएं चल रही हैं, या आंधी है, बारिश है, तूफान है, तो सुरक्षित स्थान पर चले जाइए ताकि कोई जनधन हानि ना हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और क्या खास उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह है कि आज से सुनने में आ रहा है कि अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी 2 रुपए लीटर यानी कि दाम बढ़ा दिए हैं। और सीएम योगी ने क्या कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है वर्क फ्रॉम होम के बारे में, उसके बारे में मालूमात है हमारे पास, डिटेल है हमारे पास, जानेंगे जरूर मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड। पानी पानी हो गए आए हैं, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन गड्डी पूरे होश आवाज में चलाएगा फ्रॉम द ये बादशाह की आवाज़।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ वो पेड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो के बारे में इस वक्त तो बात चुके हैं। फिलहाल क्या बजा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त 9:31 हो चुके हैं, 14 तारीख है और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि मौसम का जो मिजाज बदल रहा है उस वक्त आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। CBSE बोर्ड 12th का रिजल्ट आउट हो चुका है और कक्षा 12 के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे मार्क्स लोगों को मिले हैं, स्टूडेंट्स को मिले हैं और वो खुश हैं। और दुख इस बात का है कि नीट की जो परीक्षा है वो जो पेपर है वो लीक हुआ है, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी स्टूडेंट्स के साथ हुई है, पेरेंट्स के साथ हुई है, यूँ कहेंगे पूरा भारतवर्ष इस वक्त परेशान है। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से जो NTA है वो इस प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं इन पर रोक लगे ताकि भविष्य के साथ, किसी स्टूडेंट के भविष्य के साथ कभी कोई खिलवाड़ ना हो सके। अगर किसी का रिजल्ट पेंडिंग है देखना चाहते हैं तो cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हाँ, हम तो वही उस जमाने के जब अखबार में रिजल्ट आया करता था ना, और एक बार से मन नहीं भरता था। कब? जब पास हो जाते थे, बार बार देखते थे, कहीं लोग फेल भी हो जाते थे, दो मतलब चश्मा लगा के देखते थे कहीं इधर उधर नंबर तो नहीं छुप गया मेरे। चलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यानी कि वर्क फ्रॉम होम की बात उन्होंने कही है सप्ताह में 2 दिन के लिए। और ये जो बात है धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है, जैसे कि हमने देखा कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो भी मेट्रो के जरिए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं, यानी कि काफिले में कटौती की गई है। तो प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम सबका फर्ज बनता है कि हम कुछ कुछ बातों पर ध्यान तो दे ही सकते हैं ना।
2: आगे लगे
1: जैसे कि हम जाते हैं अपनी गाड़ी में 4-5 लोगों को लेके जाते हैं, फ्री कुछ भी नहीं है बेटा। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुरशादा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। बारिश है तो गाना क्यों चला? बस मनोरंजन के लिए।

क्या बात है। इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैं आप तक पहुंचा रहा होता हूं, लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा होता हूं, और हमेशा हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको अप टू डेट रखें। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। यूपी में वर्क फ्रॉम होम की नई पॉलिसी लागू कर दी जा गई है और सीएम योगी साहब ने कहा है कि 50 से अधिक कर्मचारी वाले जो संस्थान हैं जहां एम्प्लॉय 50 से प्लस हैं वहां पर सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने को कहा है। और इसके अलावा सरकार ने बिजली और संसाधन बचाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। अब सरकारी दफ्तरों में एसी का जो टेम्परेचर है 24 से 26 डिग्री के बीच रहेगा। शिफ्ट मेंशन किया है सरकारी नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब लोग लापरवाही बरत जाते हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। और इससे ये होगा कि ऊर्जा की बचत होगी, संसाधनों की बचत होगी, और माहौल जब ऐसा है तो निश्चित तौर पर हम सबका फर्ज बनता है कि देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। और सबसे पहले कहा गया कि जो ऑफिसर्स हैं जो मंत्रीगण हैं उनको भी इस तरीके के एग्जाम्पल्स सेट करने होंगे। विदेश यात्राओं पर सख्ती, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनको बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो निश्चित तौर पर हम सबका फर्ज बनता है कि इस यज्ञ में आप और हम मिलकर आहुति दें ताकि कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पुराने समय की अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समय था उन्होंने कहा था कि एक दिन का आप उपवास रखें। पुराने समय को जब हम देखते हैं तो सोना चांदी कम खरीदें, और वही बातें आज निकल कर सामने आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ बात हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पैनिक ले लें, आप डरें, आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अफवाहों से बिल्कुल भी मतलब कहें अलर्ट रहने की ज़रूरत है ना। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि जो बातें हमारे सामने हैं वो बातें हम आप तक पहुंचाएं। कारपूलिंग आप कर सकते हैं, शेयरिंग के साथ आप अपने घर आ जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गड्डी पूरे होश आवाज़ में चलाएगा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: बेटा मुकेश ये अभी 50 साल का है। ये बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

स्टूडियो की घड़ी में 9:48 हो चुके हैं। 14 तारीख है। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 12th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आउट हो चुका है, कक्षा 12 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि उसके बाद एक भागदौड़ शुरू होती है कि कौन सी स्ट्रीम ली जाएगी, कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, कौन सा कॉलेज होगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि एक बार आप यहां पधारिए तो सही, मारे देश यानी कि शारदा विश्वविद्यालय के आंगन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां जब आप आएंगे तो एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को समझने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। कल्चरल एक्टिविटी है, प्लेसमेंट है, पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, गेम एक्टिविटीज हैं, बहुत कुछ। इसलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। चलिए अब मैं बड़े बच्चों से निकलकर छोटे छोटे बच्चों की बात करता हूं। 13 घंटे फोन चलाती थी एक बेटी और 3 साल की मतलब 13 घंटे फोन वो चला रही है, उसकी जो एज है वो है 3 साल की। और फिर जब उसको रोका गया, आदत इतनी खराब हो गई कि दीवारों से वो बातें करने लगी। तो इस तरीके से पेरेंट्स अपना दर्द बयां कर रहे हैं, अपनी वो बातें रख रहे हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम्स, यानी कि ये आपको निर्धारित करना होगा अपने बच्चों से फोन को

खेसारी लाल यादव, मासूम शर्मा, देव नेगी, प्रीतम, इस तरीके के सबकी मेहनत से सजा ये गाना सिर्फ और सिर्फ सुरशादा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। सुरक्षित चलेगा और वॉल्यूम उतना ही रखेगा ताकि आप अगल बगल की आप दुनिया सुन पाए। गुड मॉर्निंग।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9 to 11, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय-बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है जनाबे आली, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव मेरे यानी गगन के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय-बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: और आप सुन रहे हैं आपके अपने चहेते आरजेस को। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त गगन,
0: और मैं हूँ आपके साथ शशि कपूर,
1: जो आपके लिए एक ऐसी श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपको आपकी सेहत के साथ आपका अपने पैसे बचाने के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले हफ्ते अपनी नई कड़ी सेहत सही लाभ कई में बताया था कि हमारी इस कड़ी से जानकारी पाकर आप सभी माला माल हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो दिमाग भी स्वस्थ होगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने दोस्त, स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, एनर्जी होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ में आमदनी भी। श्रोताओं, आपको याद होगा कि हमने आप सभी की मुलाकात सेहतिया सिंह जी से करवाई थी। सेहतिया भैया की कहानी सुनकर तो बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हमें तो कम से कम 25 कॉल आई स्टेशन के फोन पर और सभी ने कहा कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था।
0: सही कहा आपने, इसका बड़ा कारण था कि बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी सेहतिया सिंह की जिंदगी से मिलती जुलती थी। उन्होंने भी किसी परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण या सही समय पर सही इलाज न मिलने के कारण या फिर वही झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़कर अपनों को और अपनी जमा पूंजी को खोया।
1: लेकिन एक हादसे ने सेहतिया सिंह की जिंदगी को बदल दिया दोस्तों। उनकी सोच में बदलाव आया और उन्होंने लोगों की मदद करने की ठान ली। उनको लगा कि जागरूकता के अभाव से उनकी तरह हजारों लोग दर दर भटकते हैं, तो क्यों ना लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर उनकी मदद की जाए। सरकार इतना कुछ कर रही है लेकिन लोगों तक उसकी जानकारी न पहुंचे तो ये सही नहीं होगा।
0: आज तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
1: मतलब मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ दोस्त, पर तुम मुझे बोलने नहीं देते भाई।
0: जो सही बोलता है भला उसे कौन रोक सकता है। देखा था ना, जब सेहतिया सिंह बोल रहे थे हम सब चुपचाप उनको सुन रहे थे। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में सेहत सही लाभ कहीं से भी हमारे श्रोताओं को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अनेक बीमारियों के बारे में पता ही नहीं है।
1: अरे हाँ, जैसे कि फाइलेरिया। मैं कल जब घर जा रहा था मैंने इसके बारे में कुछ ऑटो पर लाउड स्पीकर चल रहे थे तब मैंने सुना, तो मुझे लगा कि ये सेहत से जुड़ी बात है और श्रोताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैंने श्रोताओं के लिए रिकॉर्ड भी कर लिया।
0: तो फिर सुनाओ जरा हमारे श्रोताओं को।
2: नमस्कार, सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव।
1: अब तुम बोलोगे कि ये फाइलेरिया क्या बला है, इसलिए मैंने कल शाम ही डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी से इसके बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि ये बीमारी एक परजीवी के कारण होती है और मच्छर इसे फैलाते हैं। वे ये भी बताते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें दवा की जरूरत नहीं है उन्हें भी फाइलेरिया की दवाइयां लेनी चाहिए। इसलिए सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि ध्यान से सुने। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे मोबाइल देख रहे हो, बच्चों का होमवर्क करा रहे हो या रसोई में खाना बना रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक लें और अगले 10 मिनट तक डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से सुने। और अगर आप अभी नहीं सुन पाए तो हम इस प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट फिर से करेंगे। तो हमें जरूर सुनेगा दोस्तों, और अपने घर वालों को भी सुनाइए। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी को।
3: ये एनकीडी है, तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहां पे इन्फेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमैटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देयर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडेमा एक होता है, लिम्फेडेमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों के किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है, इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फेडेमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रो फाइलेरिया बेबी उसके अंदर जाता है शरीर में, और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रो फाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रो फाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए, ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है, और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती है जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में, चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं DA, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा, एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं, या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो। अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूं, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई है और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से, प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटेगा भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वैरायटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, चार मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलिस, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में 18% ही रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से। और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया था। हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके। हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनीमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सैनिटेशन की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनीमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीईसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रो फाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा अनीमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जिसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं, आइवरमेक्टिन से वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रिपल ड्रग में न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, बुकवर्म और जुए ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है, 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको चार गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है, 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को दो गोली और 15 से बड़े को तीन गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसकी मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया। तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही लेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए।
0: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, और हमारा जो समुदाय है वो जागरूक रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, और इसके लिए कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई, और उसी के अंतर्गत हम आपके लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम लेके आते हैं जन जागरूकता के लिए। और जब तक आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तब तक आप जिंदगी का कोई भी आनंद नहीं उठा पाते, इसलिए स्वास्थ्य का अपना ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मलेरिया के बारे में तो हम सब जानते हैं और अक्सर आपको जानकारी मिलती भी रहती है रेडियो के माध्यम से, लेकिन मलेरिया से मिलता जुलता नाम है एक फाइलेरिया का। तो आज फाइलेरिया के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हैं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर श्रुति कृति वर्मा जी, उनसे जानेंगे फाइलेरिया के बारे में। तो डॉक्टर श्रुति कृति जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
4: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर श्रुति जी, मलेरिया के बारे में तो लोग अक्सर जानते हैं लेकिन फाइलेरिया के बारे में मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, हम भी इससे परिचित नहीं हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया ये जो बीमारी है क्या है।
4: देखिए, ज़्यादातर फाइलेरिया हमारे क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है, और एक पैरासाइट है आपका वाउचेरिया ब्रोंकाइफाई, वो इसका पैरासाइट है जो ये मच्छर के अंदर होता है। ये जो इन्फेक्टेड मच्छर अगर किसी को बाइट करता है तो उसको फाइलेरिया हो जाता है। शुरू में तो ये नोटिस नहीं हो पाता है, कई सालों के बाद इसके लक्षण निकल के आते हैं। तो इनमें देखा जाता है कि लिम्फ नोड में हमारी स्वेलिंग हो जाती है, उनमें दर्द भी होता है, कई बार पेशेंट को बुखार भी आता है। लिम्फ नोड के अलावा उसके स्क्रोटम में या ब्रेस्ट में इस तरह की उसमें भी सूजन आ जाती है। तो अगर इस तरह के लक्षण किसी को दिखाई पड़ते हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जा करके वहाँ पर अपना टेस्ट करा सकता है, और डॉक्टर टेस्ट करेंगे। और इसका उसके बाद में अगर उनको इसका भी नाइट ब्लड सर्वे वगैरह होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में इस तरह के केस अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं हुए हैं। और ये है कि चूंकि NCR रीजन है और यहाँ पे बाहरी प्रदेशों से और बाहरी अन्य कई जिलों से जो है लोग आते रहते हैं, और जो जिले इनसे पीड़ित हैं अगर वहाँ से कोई व्यक्ति इस तरह का आता है और हमारे पास सूचना प्राप्त होती है, तत्काल हम एक्शन लेकर के और सारी हम उसकी रिपोर्ट्स देखते भी हैं और उससे सारी चीज़ें करने अगर हमें लगता है तो देन हम उसका मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं।
0: तो आपने बताया कि क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, अब वो बात आती है सावधानी की, तो हर आदमी चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, तो किस तरह की सावधानी हमारे समुदाय के लोग अपनाएं ताकि इन बीमारियों से वो दूर रहें।
4: देखिए, मच्छर कोई भी हो, चाहे वो एडीज हो या एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, बचना तो हमें सबसे ही है, क्योंकि हर देखिए कोई ना कोई मच्छर किसी ना किसी पैरासाइट को या वायरस को उसका वाहक है। और तो मेनली सबके उपाय सब कुछ सेम है कि हमें वाटर कहीं पे भी लॉक्ड करके नहीं रखना है। कंटेनर्स अगर कहीं पे भी हैं इस तरह के तो उनको हमेशा हमें खाली करके रखने हैं। कूलर है, फ्रिज है, जहाँ पे भी पानी हमें, मैंने अभी जो आपकी फ्रिज के पीछे की ट्रे होती है उसमें भी हमें पानी नहीं भरना है। दूसरा ये है कि आप हमेशा नेट का प्रयोग कीजिए, मच्छरदानी लगा के सोइए। और अगर हम चाहें तो कई तरह के ऑइंटमेंट मार्केट्स में आते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने हाथ पैरों पे, जो हमारे खुला पार्ट रहता है हमारे हाथों का या पैरों का। तो मेरे लिए ये है कि आप उनको करिए। नीम का तेल आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, अपने हाथों पे लगा सकते हैं, पैरों में लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि हमेशा फुल बहा के आप अपना कमीज़ है खुद भी पहने और बच्चों को भी फुल स्लीव्स वगैरह पहना के रखें, क्योंकि अभी इस तरह का जो सीज़न है आपका जुलाई ऑनवर्ड्स नवंबर तक, तो ये रहता है कि यहाँ पे मॉस्किटो का थोड़ा डेंसिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम इस तरह के बचाव करते रहेंगे तो नियमित रूप से तो हम मच्छरों से बच सकते हैं।
0: बहुत से लोगों में कुछ मिथ भी है, कुछ लोग समझते हैं कि ये छुआछूत किया आनुवंशिक बीमारी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: हाँ जी, देखिए ना तो ये आनुवंशिक बीमारी है और ना ये छुआछूत की बीमारी है। सिंपल सी बात है, अगर हमारा क्यूलेक्स बाइट करता है और जिसमें ये पैरासाइट अगर है उस मच्छर में, अगर उस मच्छर ने आपको काट लिया तो निश्चित रूप से फिर आप फाइलेरिया आपको हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह का लगे, और ये कई बार 5-6 साल के बाद में या कई बार 10-12 साल के बाद ये बीमारी डायग्नोस होकर आ पाती है, तो सबसे पहले आप जो भी ट्रीटमेंट आपको मिले, स्पेशली उन जिलों में हमारा जो है ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जहाँ पे आपको डाइएथाइल कार्बामेजाइन और आइवरमेक्टिन एल्बेंडाजोल इस तरह के मेडिसिन उसमें दिए जाते हैं, वो प्रोग्राम में दिए जाते हैं कि भाई लोग उसे बहुतायत रूप में खाएं। और समुदाय में जो जहाँ पे इस तरह के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें पूरे सभी लोगों को इस तरह का मेडिसिन खिलाया जाता है ताकि ये कंट्रोल में रहे। तो अगर आपको प्रारंभिक लक्षण उभर के आ रहे हैं, आप सही जगह पे पहुंचते हैं, आपका टेस्ट होता है, फिर आपको जो रिकमेंडेशन आपको मेडिसिन मिलती है उनका सही तरीके से सेवन कीजिए, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है। तो इससे बचने का यही सिंपल उपाय है। दूसरा, कोशिश कीजिए कि मच्छर आपको बाइट ही ना कर पाए। हम हमेशा जब इस बात पे जोर देते हैं कि जो मैन और मॉस्किटो जो कॉन्टैक्ट है उसको ख़त्म किया जाए, तो अगर हम देखें मच्छरदानी लगाएंगे, फुल स्लीव्स पहनेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो हम निश्चित रूप से मॉस्किटो से बच सकते हैं।
0: ये जो बीमारी है इसके लक्षण 5 साल बाद, कभी कभी 10 साल बाद इसके दिखाई देते हैं, तो इतने साल बाद अगर पता चलता है तो क्या ये ठीक हो सकती है बीमारी?
4: देखिए, अगर स्टार्टिंग में हमने उस बीमारी को पकड़ लिया, जब लक्षण आपके प्रकट हो गए, तो बिल्कुल ठीक हो सकती है। उसको हमें स्टेज 3 स्टेज 4 तक अगर हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत दिन हो जाता है तब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आज ये बीमारी क्यूरेबल है। अगर हमारा स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर हम उसे कर लेते हैं डायग्नोज करके भी, तो अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल जाता है तो निश्चित रूप से ये क्यूरेबल है।
0: आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसी क्या उपाय अपनाएं जिससे कि इस बीमारी से वो बच सकें?
4: देखिए, मॉस्किटो के बाइट का टाइम होता है, जैसे एडीज है आपका दिन में काटता है, आप वर्क प्लेस पे कहीं भी जा रहे हैं वहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप घर पे भी हैं तो आपको वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। एनाफिलीज है आपका मॉर्निंग और इवनिंग में रहता है, ऐसे क्यूलेक्स का भी रहता है, क्यूलेक्स भी ज़्यादातर आपको इवनिंग और मॉर्निंग में ही काटता है। तो ऐसे समय पे हम थोड़ा अगर प्रिकॉशन लेंगे, और ख़ास करके जब आपका बरसात के बाद का जो सीज़न स्टार्ट होता है बरसात में, तो फिर वहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम हमेशा फुल बाजू के कपड़े पहने, ऑइंटमेंट लगा लें, बच्चों को भी हम ऑइंटमेंट लगा के रखें, तो हम उससे बच सकते हैं। और ये जान लीजिए, अगर आप अपने घर के आसपास सफाई रखेंगे, आप अपने घर में सफाई रखेंगे, तो आपको मॉस्किटो इतनी जल्दी आपको बाइट नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम इन सब चीज़ों को क्योर लेकर के चलेंगे, और अगर कभी मान लीजिए कहीं से हो भी जाता है, तो आप तुरंत का तुरंत, आपको उसमें देरी नहीं करनी है, आपको अगर पहले दिन बुखार आता है तो आप दूसरे तीसरे दिन ज़रूर आप पहुँचें और अपना टेस्ट करवाएँ।
0: डॉक्टर श्रुति कृति जी, आपने फाइलेरिया के बारे में हमको इतनी अच्छी जानकारी दी, और हमारे जो समुदाय के लोग हैं आपकी जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भाई, इतनी सारी जानकारी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हाथी पांव को फाइलेरिया कहा जाता है, और ये भी कि ये बीमारी जो एक परजीवी की वजह से होती है, कोई भी व्यक्ति उसका वाहक बन सकता है, क्योंकि इसके लक्षण इतने सालों बाद दिखते हैं, लोग दवाइयां लेने से कतराते हैं।
0: भाई, आप तो वाकई में बहुत समझदार हो गए हो, तो क्या आज हमारे सेहतिया भैया नहीं आएंगे?
1: आएंगे आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे, और आएंगे तो महिलाओं को, बच्चों को, हम सबको जागरूक करेंगे।
0: बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया की, तो ये बीमारी भी दोनों महिला और पुरुषों में हो सकती है?
1: कभी कभी ना तुम ऐसे बात करते हो भाई कि मुझे लगता है कि तुम RJ कैसे बन गए। मच्छर क्या ये देखकर काटता है कि ये पुरुष है या महिला?
0: तो ये कहो ना कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और बाकी की बातें ना जो हमारे सेहतिया भैया हैं उनसे ही जानेंगे इसके बारे में।
1: जिनका तुम्हें इंतजार था वो आ ही गए। नमस्कार भैया, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा है।
5: भाई सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार।
0: तो क्या सेहतिया भैया आप भी फाइलेरिया के जन जागरूकता कार्यक्रम में बिजी थे?
1: बिल्कुल ठीक समझे आरजे साहब, हमारे जिले में भी फाइलेरिया की दवाएं दी जाएंगी। देश के अनेक जिलों की तरह हमारा जिला भी फाइलेरिया जैसे नेग्लेक्टेड बीमारी के चपेटे में है, इसलिए हमारे जिले में भी अन्य जिलों की तरह मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं MDA राउंड चलाया जाएगा।
0: सेहतिया भैया, अभी हमने डॉक्टर साहब को सुना, इस बीमारी का सही नाम भी इतना मुश्किल है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, और ऊपर से ये एक संक्रामक बीमारी है जो पता चला मच्छरों के काटने से फैलती है।
1: ये NTD में से एक है। ये वो रोग हैं जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में बहुत आम होते हैं, जिनमें से भारत एक है, परंतु इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता और फाइलेरिया उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग यानी NTD का हिस्सा है। ये बीमारी शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन हो जाती है। शुरुआत में तो सूजन मामूली लगती है, लेकिन अगर समय रहते इलाज न कराया जाए तो ये स्थायी विकृति में बदल सकती है। भाई इस बीमारी के चलते मरीजों को अक्सर पीड़ित होने के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है।
0: बिल्कुल, हमारे चाचा भी इस बीमारी के कारण समाज से कट के रह गए थे, क्योंकि लोग उन्हें देखने से डरते थे, लेकिन सेहतिया भैया की समझदारी और धैर्य ने लोगों के मन में चल रही भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने बताया कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं है और किसी से संपर्क करने में कोई खतरा नहीं है। तो सेहतिया भैया, ये रोग मतलब कहने का मेरा ये है कि किसी को भी हो सकता है ना?
1: होने को तो किसी को भी हो सकता है भाई, लेकिन अक्सर ये रोग गरीब, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। NTDS का सामना करने वाले समुदायों में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत अधिक होती हैं। भाई कपूर साहब, लेकिन लिम्फेटिक न केवल शारीरिक तकलीफ देता है बल्कि इससे पीड़ित व्यक्ति अक्सर सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करते हैं। लोग अंधविश्वासों और भ्रांतियों के कारण उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। यही कारण है कि लिम्फेटिक को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं माना जाता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।
0: तो उन उपायों में से एक उपाय ये भी है कि पूरे समुदाय को एक साथ दवा दी जाती है, जिससे संक्रमण का प्रसार रुक सकता है और बीमारी के बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इससे न केवल मरीजों का इलाज होता है बल्कि रोग नियंत्रण में भी मदद मिलती है। सभी गोलियों का सेवन एक साथ करें लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को जड़ से खत्म करने में एक उपाय है।
1: बिल्कुल, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो भाई कपूर साहब। जब हम पूरे समुदाय में एक साथ दवा वितरण करते हैं तो संक्रमित व्यक्ति की संख्या घट जाती है भाई, और लिम्फेटिक के फैलने का डर भी कम हो जाता है। इससे लोगों में डर और अंधविश्वास को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जब दवा उपलब्ध होती है तो बीमारी के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया जा सकता है।
0: तो अगर हम संक्षेप में कहें कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक गंभीर और विकराल बीमारी है, जिसे रोकने के लिए MDA जैसी सामूहिक स्वास्थ्य पहलों का उपयोग किया जाता है, साथ ही लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जैसी NTDs पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या हमारे देश में और भी नेग्लेक्टेड रोग हैं?
1: भाई भारत में उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग NTDS में प्रमुख रूप से कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, हुकवर्म संक्रमण, सिस्टिसोमियासिस, ट्रेकोमा, रेबीज और स्नेक बाइट एनवेनमेशन जैसे रोग शामिल हैं भाई।
0: और इन बीमारियों के फैलने के मुख्य कारण क्या हैं?
1: भाई ये बीमारी मुख्य रूप से अस्वच्छता, साफ पानी की कमी और गरीबी के कारण फैलती है।
5: भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, लेकिन अभी भी जागरूकता, समय पर निदान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है।
0: सिहतिया भैया, मेरा एक सवाल और है। वो आपने पिछले एपिसोड में कुछ बताया था ना, निक्षय मित्र।
5: बताया था भाई, बिल्कुल बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। निक्षय मित्र एक सामुदायिक पहल है जिसका उद्देश्य टीबी अर्थात क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को पोषण, मानसिक समर्थन और आवश्यक देखभाल प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत लोग, संस्थाएं और संगठन टीबी मरीजों को गोद लेकर उनकी उपचार यात्रा में सहायता करते हैं।
0: तो क्या भैया ये फाइलेरिया के मरीजों के लिए भी स्कीम है?
5: नहीं, निश्चय मित्र योजना केवल टीबी अर्थात क्षय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए है। इसके तहत मरीजों को आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपए प्रति माह अब दिए जा रहे हैं। ये राशि उनके पोषण और देखभाल के लिए सीधे उनके बैंक खाते में जाती है, जिससे उनकी उपचार प्रक्रिया बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके।
0: लेकिन राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भी तो सरकार बहुत मदद करती है
5: भाई। सबसे पहले तो फाइलेरिया के प्रसार को रोकना और इसे जड़ से खत्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सरकार हर साल सामूहिक रूप से दवाइयां मुफ्त में वितरित की जाती हैं। फाइलेरिया के मरीजों को हाइड्रोसिल सर्जरी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त करवाने की सुविधा दी जाती है। साथ ही निवारक देखभाल और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सूजन को कम करने के लिए मुफ्त दवाएं, साफ सफाई और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी दी जाती है। समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जहां जांच, परामर्श और दवाइयां दी जाती हैं। एक और खास बात, इस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाता है, जिससे मरीजों को मुफ्त इलाज मिल सके।
0: सियतिया भैया, ये तो आपने और डॉक्टर भूपेंद्र ने हमारे श्रोताओं को बहुत ही काम की जानकारी दी है। हमारे सभी श्रोता दोस्त भाइयों और बहनों, बीमारी की तकलीफ और इलाज के खर्च से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छरों से बचाव करें और सरकारी दवाइयां जरूर लें, और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर फाइलेरिया से संबंधित योजनाओं की और अधिक जानकारी पाएं।
5: तो भाई कपूर साहब, अब समय हो गया मेरे जाने का, क्योंकि घर घर जाकर सबको दवाएं जो खिलानी है।
0: लेकिन आपके जाने से पहले शपथ लेना तो बहुत जरूरी है सीधे भैया।
5: बिल्कुल भाई, सही कहा।
6: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दवाई जरूर खाएं। सिहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
7: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
8: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है।
5: और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
8: जी
5: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
8: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
5: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
1: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
0: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
2: हाँ माँ जी।
3: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: हाय मैं उरान विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-6666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। तो किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे दुधारू पशुओं की देखभाल की और साथ ही साथ आप मोटे अनाज की खेती यानी कि श्री अन्न की खेती कैसे कर सकते हैं। पहले तो आप करते थे लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया था जहां पर आपने मोटे अनाज की खेती करना छोड़ दिया, लेकिन आज के समय में मोटे अनाज की बाजार में बहुत मांग है और अच्छी कीमत में आप इनको बेच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुधारू पशुओं की। जी हाँ किसान मित्रों, हमारे जो पशु हैं और हमारी जो खेती है वो एक दूसरे के पूरक हैं। खेती से हमें 3 महीने में 6 महीने में उत्पादन मिलता है, लेकिन पशुओं से कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है और साथ ही साथ हमारे जो दुधारू पशु हैं वो घर का खर्च चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब कभी खेती में नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई पशुओं के द्वारा हो जाती है। तो इस तरह से खेती का और पशुपालन का तालमेल चलता रहता है और जो किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो उनको खेती में भी घाटा नहीं होता है, फायदा ही फायदा होता है। तो किसान मित्रों, दुधारू पशु हमारी आय को दोगुना करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं, लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं जिसके कारण हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों को पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। अगर हम पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोगों के बारे में बात करें तो वो है गलाघोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी और तिल्ली या बागी रोग शामिल है। तो किसान मित्रों, अगर आपको इन बीमारियों का कोई भी संक्रमण आपके पशुओं में दिखे तो आप तुरंत पशुओं के डॉक्टर से बात करें। किसान मित्रों, खुरपका मुंहपका रोग जिसको संक्षिप्त रूप में FMD कहते हैं, ये बीमारी गाय भैंस में बड़ी शीघ्रता से फैलती है और एक प्रकार के विषाणु से उत्पन्न होती है। ये रोग गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों और सूकरों में भी हो जाता है। इस बीमारी में जीभ के नीचे मसूड़ों, थनों और खुरों में छोटे आकार के छाले फपोले पड़ जाते हैं। पशुओं को तेज बुखार होता है और जुगली करना पशु बंद कर देते हैं। दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, पशुओं के मुंह से लार गिरने लगती है और पशुओं के थनों पर छालों से कभी कभी थनेला की बीमारी हो सकती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये रोग स्वस्थ पशु के बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से और लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु बीमार पशु की लार, मुंह, खुर और थन में पड़े फफोलों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसान मित्रों, अब बात आती है कि आप अपने दुधारू पशुओं को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। तो उसका सही और सीधा रास्ता ये है कि आप अपने सभी पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव के लिए सर्वोत्तम है। इसीलिए पशुओं को FMD के वर्ष में 2 बार टीके अवश्य लगवाने चाहिए। तो अपने पशुओं का टीकाकरण करवाने के लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय जा सकते हैं, वहां पर बात कर सकते हैं और अपने पशुओं का टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा बीमार हो जाने पर रोगग्रस्त पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए। बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देनी चाहिए। रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु नहीं खरीदना चाहिए। पशुशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए। संक्रमित पशुओं को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे उनको खनिज और विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और समय समय पर पशु चिकित्सक का परामर्श लेते रहना चाहिए। तो इन सब बातों का किसान मित्रों आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो पशु हैं वो रोग मुक्त रहेंगे और आपको आर्थिक लाभ पहुंचाते रहेंगे। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कि हम अपने दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बलराम बैसला से ये उपदेश। किसान मित्रों, मोटे अनाज जिनसे आप बखूबी परिचित होंगे और पहले आप इनको खूब करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपने इनको करना छोड़ दिया। लेकिन वर्तमान समय की हम बात करें तो आजकल बाजार में हर जगह, हमारे देश के अलावा विदेशों में भी मोटे अनाजों की मांग बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर आप मोटे अनाज की खेती करते हैं तो एक तो आप स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, इनका सेवन करेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे और साथ ही साथ आपकी आमदनी भी अच्छी होगी, क्योंकि मोटे अनाजों की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। अब किसान मित्रों, मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मोटे अनाजों को सुपर फूड और पोषक अनाज कहा जाता है। किसान मित्रों, बाजरा जैसे मोटे अनाज को भविष्य का अनाज तक कहकर संबोधित किया जा रहा है। इससे बखूबी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से आने वाले भविष्य में कितना महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। भारत में बाजरा, ज्वार, सवा, कुटकी, कोदो, रागी, कंगनी, चीना, कुट्टू और चोलाई प्रमुख रूप से मोटे अनाज या यूं कहें श्री अन्न पैदा किए जाते हैं। अब किसान मित्रों, बात करेंगे हम कि मोटे अनाजों की इतनी आजकल मांग है, आखिर क्या वजह है, क्या ऐसे गुण इनमें पाए जाते हैं जो कि बाजार में इनकी मांग बहुत ज्यादा है, लोग अब बहुत ज्यादा मोटे अनाजों को खाना पसंद कर रहे हैं। तो ये बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं प्रीति चौधरी।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रीति चौधरी से ये देशभक्ति रागनी। और इस रागनी से पहले हम बात कर रहे थे कि आजकल जो श्री अन्न है, मोटे अनाज है, उनकी मांग क्यों बढ़ रही है, क्यों लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्यों उनको खरीद रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मोटे अनाज हैं वो गुणों की खान है और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा जो खूब मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा अनाज उनका सटीक उपचार है। गेहूं में मिलने वाला प्रोटीन, ग्लूटेन इन अनाजों में नहीं होता, इसीलिए इनसे पाचन तो अच्छा होगा ही। इसके साथ ही किसान मित्रों, आपके फायदे की बात ये है कि जो मोटे अनाज हैं, अगर आप इनकी खेती करते हैं तो हमारी अन्य जो खेती हैं उनकी अपेक्षा इनमें लागत कम आती है। तो ये भी आपके लिए एक फायदा रहेगा कि आपकी लागत मोटे अनाजों को करने में कम आएगी और आपको फायदा ज़्यादा होगा। तो आप ज़रूर मोटे अनाज की खेती करिए ताकि आप भी स्वस्थ रहें और जहां तक ये श्री अन्न पहुंचेगा आपके द्वारा तो वो भी स्वस्थ रहें और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो। और कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप ऐसी खेती करें जिसमें आपको फायदा ज्यादा हो और खेती में लागत कम आए। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मोटे अनाज की खेती की। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा महाभारत का और गायक कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे महाभारत के किस्से से ये रागनी। गायक कलाकार थे लोकेंद्र सिंह। इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर होगी इसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: बहू, इतनी खांसी?
1: माँ जी, मुझे टीबी है।
0: टीबी? और छुपा कर रखा?
1: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
0: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें।
2: टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये

कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल आईक्यू तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है, जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

प्रिय बंधु आपके बीच पेश है किस्सा सत्यवान सावित्री। दोस्तों उस मौके से बात कि जब सत्यवान के माता पिता साल देश के अंदर राजा द्युम्न का राज था। मेरे मेहरबानों अंधे होने की वजह से उनके वजीर चौन राय ने एक चाल चलनी चाहिए, उसके दिल में बदी आ गई। उसने प्रजा को बहकाया कि राजा द्युम्न अंधे, इनसे राज नहीं चलेगा। तो दोस्तों और उन्हें मरवाना चाहा। राजा द्युम्न को जो पता चल गई कि चौन राय वजीर में हमारे साथ में चाल चलनी चाहिए, तो राजमहल के बीचों बीच एक सुरंग खुदवाई और उस सुरंग के जरिए बियाबान जंगल की राही ले लेते हैं। दोस्तों कई रोज गुजर गए, अब उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। तो सत्यवान के दिल में एक बात आई कि बियाबान जंगल में लकड़ी काटेंगे और उनको बेच करके माता पिता का और अपना पेट भरेंगे। कंगाली का समय था। दोस्तों बुरे वक्त में आज सत्यवान राजकुमार कंगले के भेष में पास में एक शहर पड़ता था और एक सेठ जी के पास पहुंच गया।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर एक मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
2: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ। सुनो शारदा 90.8 FM आपसे यही अपील करता है, प्रार्थना करता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिला देवी रूप में पूजी जाती है और हमारे हिंदुस्तान में कन्याओं की पूजा की जाती है, और जब एक महिला अगर रौद्र रूप धारण कर ले तो वो काली भी बन जाती है। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ हमारा यही है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनका दिल हमें नहीं दुखाना चाहिए। और साथ ही साथ हम महिलाओं से आग्रह करते हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-4060-205 पर, क्योंकि हमारे यहाँ शारदा विश्वविद्यालय में एक कानून विभाग है जो इसके विशेषज्ञ यहाँ जानकार हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान एक खास जानकारी के माध्यम से उस समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ शारदा विश्वविद्यालय का एक वन स्टॉप सेंटर भी है जहाँ पर लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और उसका समाधान भी होता है। अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको अपने अधिकार मालूम नहीं है। उसके बाद कानून के क्या क्या अधिकार हैं वो हमें मालूम नहीं। हमारा आशय यही है कि हम सबको हमारे अधिकार पता होने चाहिए। पहले भाग में हमने महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में बात की, अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस भाग में हम बात करते हैं अन्य कानूनी प्रावधान के बारे में। विवाह अधिनियम, इसके अंतर्गत बात सामने आती है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कई कानून पारित किए गए हैं जिनके जरिए विवाह की संस्था को नियंत्रित किया जाता है। विवाह से संबंधित अधिनियम कुछ इस प्रकार हैं, जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हर हिंदू विवाह को पंजीकृत कराना जरूरी है, चाहे वो पूरे रीति रिवाजों से संपन्न हुआ हो। हिंदू विवाह परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार होना चाहिए, जिसमें सप्तपदी यानी वर और वधु पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं और उसके बाद ही विवाह संपूर्ण माना जाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आम आदमी को समझना वाकई बहुत जरूरी है, और इसी तरीके से आम भाषा में ये बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रावधान है, उसके विषय में बात करते हैं। एक सब्जेक्ट है वैध विवाह। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि विवाह के समय वर ने 21 वर्ष और वधु ने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, किसी भी पक्ष के जीवन साथी जीवित न हो। सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार नजदीकी रिश्ते में विवाह वैध माना जाता है। समाज में रिवाज न होने पर नजदीकी रिश्ते में विवाह नहीं कर सकते, ऐसा विवाह वैध नहीं माना जाता। निषेध, ये एक हेडिंग है। इसके अंतर्गत बात सामने आती है आदर्शवादी संबंधों के बीच विवाह अस्वीकार्य है, जैसे माँ और बेटे, पिता और पुत्री, बहन और भाई के बीच विवाह निषेध है। द्विविवाह या बहुविवाह निषेध है। दूसरे विवाह के मामले में संबंधित पक्ष को अपनी पत्नी या पति से पहले तलाक लेना होगा, उसके बाद दोबारा विवाह किया जा सकता है। तलाक का आधार क्या है, इसके विषय में बात करते हैं। 2 या 2 वर्ष से ज्यादा समय से अलग अलग रहना, हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म में परिवर्तित हो जाना, मानसिक अस्वस्थता, विषयी रोग, कोढ़, अगर पति दोबारा विवाह कर ले या वो बलात्कार, समलैंगिकता अथवा पाशविकता का दोषी पाया जाए, तो इस आधार पर पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। नव विवाहित जोड़ा विवाह के 1 वर्ष के भीतर तलाक के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता। ये वो बातें हैं जो आपको, हम सबको समझना वाकई बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 के विषय में। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह अदालत में किया जाता है और इसके लिए रस्मों रिवाज या समारोह की जरूरत नहीं होती। विवाह करने के इच्छुक पक्षों को जिले के मैरिज रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रपत्र में एक नोटिस दायर करना होता है। विवाह के लिए नोटिस देने की तारीख से पहले कम से कम 30 दिन की अवधि के लिए किसी एक पक्ष का उस जिले में रहना अनिवार्य होता है। 30 दिन की अवधि के भीतर अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती तो विवाह की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। जब दोनों पक्ष विवाह अधिकारी और 3 गवाहों की उपस्थिति में एक दूसरे को यह कहते हैं कि मैं तुम्हें कानूनन पत्नी मानती हूँ या
उत्पत्ति मानता हूं, तभी उनका विवाह संपन्न होता है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में एक खास जानकारी, और हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि महिलाओं का हम सबको सम्मान करना चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकार पता होने चाहिए ताकि समय पर वो अपने अधिकारों की बात रख सकें। चलिए, वक्त है यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का, कहीं आप जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूँ गगन आपके साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ। आपके शहर का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और सामुदायिक रेडियो स्टेशन वो सब बातें करता है जो हमारे जीवन का आधार है। आधार यानी कि हेल्थ की बातें, ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें और अधिकार, कानूनी अधिकार क्या क्या हैं, वो सामाजिक बातें भी हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। हमारा कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और आज हम उन्हीं के अधिकारों के विषय में बात कर रहे हैं कि उनके कौन कौन से अधिकार हैं और उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ अधिकारों के बारे में, विवाह के अधिनियम के बारे में मैंने बात की, अब उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के विषय में, यानी कि 1872। इस अधिनियम के अंतर्गत होता क्या है, विवाह प्रातः 6 बजे से साय 7 बजे के बीच संपन्न कराए जाते हैं। अगर विवाह के इच्छुक व्यक्ति किसी खास गिरजाघर में विवाह करना चाहते हैं जिसके धर्म पुरोहित को इसका नोटिस दिया गया हो, तो वो नोटिस को गिरजाघर के किसी विशिष्ट स्थान पर लगाएंगे। तीसरा बिंदु आता है इसमें, धर्म पुरोहित द्वारा जिस तारीख को प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसके बाद 2 महीने तक अगर विवाह नहीं होता है तो की गई सभी कार्रवाइयां रद्द समझी जाएंगी और विवाह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि नया नोटिस और नया प्रमाण पत्र जारी नहीं कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1936 के विषय में। ये जानकारी जब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। मुझे भी वाकई बहुत अच्छा लग रहा है इन विषयों पर बात करते हुए। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप जब ये जानकारी सुन रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं इसका लाभ जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं पारसी विवाह किसी पारसी पुरोहित या पारसी दस्तूर अथवा मोबेट की उपस्थिति में आशीर्वाद परंपरा के रूप में कराया जाता है। विवाह कराने वाले पारसी पुरोहित, दस्तूर, मोबेट विवाह करने वाले जोड़े, पुरोहित और 2 गवाहों के हस्ताक्षर किया हुआ विवाह प्रमाण पत्र जारी करता है। सभी पारसी, ईरानी, जोरोस्ट्रियन विवाहों को मैरिज रजिस्ट्रार में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। इसकी अनुपालना न करने पर जुर्माना अथवा फाइन देना पड़ता है, यहाँ तक कि जेल की सजा भी हो सकती है। 21 वर्ष और इससे अधिक उम्र के पारसी युवक और 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र की लड़कियां ही विवाह कर सकते हैं। खून के रिश्तों में विवाह नहीं हो सकता, मसलन जैसे कि भाई बहन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय मुस्लिम विवाह अधिनियम के विषय में। इसके अंतर्गत बात सामने आती है, मुस्लिम विवाह अधिनियम मुस्लिम विवाह कानून पर आधारित है। भारतीय मुस्लिम वर और वधु के बीच विवाह या निकाह एक वैधानिक बंधन है जिस पर वर और वधु सहमत होते हैं। मुस्लिम विवाह में आमतौर पर एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव यानी इजाब किया जाता है और दूसरे पक्ष द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार यानी कबूल किया जाता है। ये बातें बड़े धीरे धीरे अच्छी तरीके से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। दूसरी बात आती है, विवाह जहां हो रहा है वहां काजी का होना जरूरी नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत 2 वयस्कों की उपस्थिति में विवाह के प्रस्ताव यानी इजाब और स्वीकृति यानी कबूल के आधार पर विवाह हो जाता है। अब बात करते हैं भारतीय मुस्लिम विवाह अधिनियम के अंतर्गत निषेध। मुस्लिम विवाह कई ऐसे प्रकार हैं या यूं कहें कि कई ऐसे उदाहरण हैं उसमें नहीं हो सकता, जैसे कि 2 बहनों के साथ, पालन पोषण करने वाली मां के साथ, अगर किसी पुरुष के पहले ही 4 पत्नियां हैं, अगर पुरुष और महिला ने पहले विवाह किया और उनका तलाक हो गया और महिला ने दोबारा विवाह नहीं किया है। तो ये ऐसी कुछ खास जानकारियां हैं जो मैं लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं और जिसमें हमारा सहयोग कर रहा है हमारा रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महिलाओं के अधिकार की बात है, उनके कानूनी अधिकार को जानना समझना वाकई बहुत जरूरी है। ईश्वर ना करे कभी उनके साथ कुछ गलत हो, अगर कहीं कुछ गलत होता है तो ये समझना जरूरी है कि ये सब एक अपराध की श्रेणी में आता है अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। और उस वक्त अगर आपको पता है कि मेरे अधिकार ये हैं और मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जरूर विशेषज्ञ की राय लें। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद बातों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। मैं हूँ गगन आपके साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में। इससे पहले दो भागों में हमने बातें की हैं, लेकिन आज कुछ और खास है, कुछ नया है। कुछ विवाह अधिनियम के बारे में बात हुई, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, पारसी विवाह, ईसाई विवाह अधिनियम। अब हम बात करते हैं दत्तक ग्रहण के बारे में। दत्तक ग्रहण का अर्थ उस प्रक्रिया से होता है जिसमें गोद लिए जाने वाले बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग करके दत्तक ग्राही यानी गोद लेने वाले माता पिता को इस संबंध के साथ जुड़े सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों सहित कानूनी रूप से सौंपा जाता है। जैविक माता पिता अगर बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते तो उनके स्थान पर उस बालक को एक स्थायी परिवार उपलब्ध कराना दत्तक ग्रहण यानी गोद लेने का प्रमुख उद्देश्य है। दत्तक ग्रहण से संबंधित अधिनियमों का विवरण कुछ इस प्रकार है जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि भारत में हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम वर्ष 1956 में ये बनाया गया है। ये अधिनियम अपने सभी रूपों में हिंदुओं और उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण एक कानूनी प्रक्रिया है। परिवार के सदस्यों का भरण पोषण अनिवार्य है। ये अधिनियम दत्तक ग्रहण के उन मामलों पर लागू नहीं होता जो इस अधिनियम के बनने की तारीख से पहले हुए थे। हालांकि ये ऐसे विवाह पर लागू होता है जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में हुए हों। इसके अतिरिक्त अगर पत्नी हिंदू नहीं है तो पति इस अधिनियम के अंतर्गत आधुनिक हिंदू कानून के तहत भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं है। अब बात करते हैं अभिभावक और आश्रित अधिनियम 1890। इसके अंतर्गत विशेषज्ञ बताते हैं कि अभिभावक और आश्रित अधिनियम 1890 खासतौर पर मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के लिए बनाया गया था क्योंकि उनके कानून दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं देते। इसमें कुछ बिंदु हैं जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अभिरक्षा के तहत ही बालक गोद ले सकता है। ये अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को अवयस्क या बालक मानता है। न्यायालय या नियुक्ति प्राधिकारी बालक के अभिभावक के तौर पर किसी को नियुक्त करने या रद्द करने के निर्णय लेने की योग्यता रखता है। अवयस्क की वरीयता को ध्यान में रखा जाता है। एक अवयस्क को किसी अवयस्क का अभिभावक नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय की अनुमति के बिना और किसी वसीयत के बिना अभिभावक आश्रित की संपत्ति न तो गिरवी रख सकता है और न ही बेच सकता है। न्यायालय हमेशा आश्रित के हित में सोचता और कार्य करता है। आश्रित की चल और अचल परिसंपत्ति की सूची अभिभावक को न्यायालय में जमा करानी होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बात हमारे सामने आती है किशोर न्याय। इसके अंतर्गत बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000। विशेषज्ञ बताते हैं कि किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम बच्चे के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण पर बल देता है और इसके लिए ये दत्तक ग्रहण को एक महत्वपूर्ण विकल्प मानता है। दूसरी बात, इस अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए है जो अनाथ, परित्यक्त, उपेक्षित और दुर्व्यवहार के शिकार है। जांच से संतुष्ट होने के बाद न्यायालय द्वारा ऐसे बालकों को गोद लिया जाता है। चलिए, बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है। ये खास जानकारी मैं आप तक यूं ही पहुंचाता रहूंगा, मगर वक्त एक छोटे से अंतराल का। भाई, बातें जब ज्यादा हो जाती हैं तो आप भी म्यूजिक सुनना चाहते हैं, कोई गाना आप सुनना चाहते हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा गाना आपके लिए प्ले कर दूं और उसके बाद मैं आपसे पुनः मिलूंगा। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों पे निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

0: है,
1: है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ। एक खास विषय पर हम बात कर रहे हैं और इससे पहले दो भागों के जरिए वो बातें मैंने आप तक पहुंचाई, यानी कि आज तीसरा भाग है, यानी कि तीसरा एपिसोड। इसके अंतर्गत बात हो रही है महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में। विशेषज्ञ क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, कानून क्या कहता है, वो सारी बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें हमें सहयोग मिल रहा है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान भारत सरकार का। अब हम बात करते हैं किशोर न्याय संशोधित विधेयक 2014 की मुख्य बातें। मतलब धीरे धीरे चलते चलते हम यहाँ तक आ चुके हैं, तो ये बातें भी जानना समझना हमारे लिए वाकई बहुत जरूरी है। विषय है किशोर न्याय संशोधित विधेयक 2014 की मुख्य बातें। ये विधेयक किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 का स्थान लेगा। ये कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की संबद्धताओं को पूरा करता है। अगला बिंदु है, ये विधेयक जघन्य अपराधों के मामलों में 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था भी है कि किसी कम गंभीर अपराध के लिए एक किशोर पर वयस्क की तरह तभी मुकदमा चलाया जा सकता है अगर वो 21 वर्ष की उम्र के बाद पकड़ा गया हो। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों को गठित करने का प्रस्ताव भी है। किशोर न्याय बोर्ड ये निर्धारित करने के लिए कि अपराधी किशोर को सुधार घर भेजा जाए या उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चला जाए आरंभिक पूछताछ करेगा। बाल कल्याण समिति संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की संस्थागत देखभाल का निर्धारण करेगी। इस विधेयक में गोद लेने वाले माता पिता की पात्रता और गोद लेने की प्रक्रिया को भी निर्धारित किया गया है। इसमें बच्चों से क्रूरता बरतने, बच्चों को नशीले पदार्थ देने या उनका अपहरण करने या बच्चों की बिक्री के मामलों में दिए जाने वाले दंड को भी रेखांकित किया गया है। किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को कई श्रेणियों में बांटा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि जघन्य अपराध भारतीय दंड संहिता IPC की धारा अन्य कानून के अंतर्गत न्यूनतम 7 साल की जेल है। गंभीर अपराध 3 से 7 वर्ष की जेल, लघु अपराध 3 वर्ष से कम की जेल। किशोर को रिहाई के अवसर के बिना आजीवन कारावास या मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अगला बिंदु आता है कि विधेयक के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को विशेष गृह में ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष की अवधि के लिए रखा जा सकता है, किंतु कुछ मामलों जैसे कि जघन्य अपराधों के मामलों में उन पर वयस्क व्यक्तियों की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड किशोर द्वारा किए गए अपराध व उन अपराधों के परिणामों के बारे में किशोर की मानसिक शारीरिक क्षमता का निर्धारण करेगा। बोर्ड कई प्रकार की सिफारिश भी कर सकता है, जैसे कि मध्यस्थताएं, जैसे परामर्श, सामुदायिक सेवा, कम या अधिक अवधि के लिए सुधार गृह में रखना, किशोर को बाल न्यायालयों में रेफर करना जहां उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। इस विधेयक में कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि माता पिता या अभिभावकों द्वारा बच्चों को सुपुर्द करने के लिए पुनर्विचार अवधि को बढ़ाना, जहां बच्चों को स्वदेशी दत्तक ग्रहण नहीं किया जाता उन मामलों में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की अवधि को बढ़ाना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यान्वयन हेतु विधेयक की मॉनिटरिंग के लिए निर्धारित किए गए प्राधिकरण को कार्य सौंपना। अब कुछ और अन्य संबंधित अधिनियम है, महिलाओं से संबंधित अन्य अधिनियम जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा जरूर। वाकई एक बहुत खास जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसका विषय महिलाओं के कानूनी अधिकार, उसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ, और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं और उसके अंतर्गत लगातार बढ़ते बढ़ते हम यहां तक आ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में, और जिस पर हमने दो एपिसोड आप तक पहुंचाए उसके बारे में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। हमने बातें की कुछ कानूनी विवाह पर आधारित अधिकारों के बारे में, मुस्लिम विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, पारसी ईसाई विवाह अधिनियम, अब उसके बाद दत्तक ग्रहण है ना, उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं से संबंधित अन्य अधिनियम के बारे में। इसके अंतर्गत बात सामने आती है मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961। ये अधिनियम हर प्रतिष्ठान, औद्योगिक, व्यवसायिक, कृषि संबंधी या अन्य प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। इसमें बहुत सारे कुछ बिंदु हैं जिसके विषय में मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ। महिलाओं को प्रसव या गर्भपात के बाद अगले 6 हफ्तों तक काम पर रखना निषेध है। हर महिला प्रसव के दिन समेत अगले 6 हफ्तों तक कार्य से अनुपस्थित रहने पर दैनिक वेतन के हिसाब से मातृत्व हित लाभ का भुगतान पाने की हकदार है। मातृत्व हित लाभ की अधिकतम अवधि 12 हफ्ते हो सकती है, प्रसव के दिन समेत 6 हफ्ते पहले से और प्रसव के 6 हफ्ते बाद तक। महिला की मृत्यु के मामले में मातृत्व हित लाभ का भुगतान, मेडिकल बोनस का भुगतान, गर्भपात के लिए छुट्टी, गर्भावस्था, प्रसव, बच्चे का समय पूर्ण जन्म तथा गर्भपात के कारण हुई अस्वस्थता के लिए छुट्टी। प्रसव के बाद काम पर वापस आने पर महिला को आराम के लिए या यूं कहें कि विश्राम के लिए समय देना। बालक के 15 महीने के हो जाने पर उसकी देखभाल के लिए दिन में 2 बार निर्धारित अवधि का समय दिया जाना चाहिए। प्रसव के बाद काम पर वापस आने पर महिला को विश्राम के लिए थोड़ा समय देना, और उस महिला के बच्चे को 15 महीने का हो जाने तक उसकी देखभाल के लिए दिन में 2 बार निर्धारित अवधि का समय दिया जाना चाहिए। अगर कोई महिला कार्य से अनुपस्थित रहती है तो इस प्रावधान के अनुसार उसकी नियोक्ता द्वारा उसे उसकी अनुपस्थिति में कार्य से हटाना कानूनन सम्मत नहीं होगा। अगर कोई नियोक्ता इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है, जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है अथवा 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। चलिए वाकई बहुत अच्छी अच्छी जानकारी जो एक रिसर्च के जरिए सुनो शारदा 90.8 FM आप तक पहुंचा रहा है, और हम आपसे आशा करते हैं कि इन जानकारियों का आप लाभ उठाएं। अगर आप कुछ हमसे जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो जरूर आप हमें कॉल करें 0120-4060-205 पर। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है कि वक्त मुझे इशारा कर रहा है कि मैं थोड़ा अब आपसे अनुमति ले लूं और अपने शब्दों को यहीं विराम दूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इन बातों को आप जानेंगे, समझेंगे, और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो इन कानून के अधिकार का सदुपयोग करते हुए आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई

रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ

हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में।
1: नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। आज जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक छोटी सी कविता जो शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। यह वसंत भाग 2 जो कि 7वीं की किताब है उसका पहला ही पाठ है। तो आइए आज की इस कक्षा में हम पंछी की बात करते हैं। कविता का शीर्षक पहले ही आपको बताया जा चुका है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इस कविता में पंछी की बात की जा रही है। पंछी का मतलब चिड़िया जो उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ते हैं, जो एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाना चाहते हैं, जो अपने मन के अनुसार खुले आसमान की ओर भाग जाना चाहते हैं। वैसे ही पंछी की बात आज इस कविता में होने वाली है। और पंछी ही क्या, हमारे आपके सबके मन में कहीं न कहीं चिड़िया एक बैठी होती है जो उन्मुक्त होना चाहती है, जो आज़ादी चाहती है। मन हमारा भी चाहता है कि हमारे मन में जो हो हम वैसा ही करें, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। और अभी जब हम आप सब लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घरों में हैं, विद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, पार्क में नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे मन के अंदर का पंछी बार बार उड़ना चाहता है। तो हमारी हालत भी अभी कुछ वैसी ही है। हम आज़ाद तो हैं लेकिन अपने घर की चार दीवारियों के बीच में। तो हमारी आपकी सबकी हालत अभी उस पंछी जैसी ही है जो कि इस कविता में कवि बताने वाले हैं। तो आइए इस रोचक, आनंददायक और अभी के समय से जुड़ी हुई कविता को पढ़ते हैं। कविता को समझने के लिए, उसका अर्थ करने के लिए आवश्यक है कि हम कविता का एक पाठ करें। और पाठ भी कैसा, जो उचित आरोह और अवरोह के साथ हो। आरोह अवरोह का मतलब उतार और चढ़ाव। अगर आप उतार चढ़ाव के साथ कविता को नहीं पढ़ेंगे, गीत को अगर उसके लय के अनुसार नहीं गाएंगे, तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। और अगर आप उचित उतार चढ़ाव के साथ उसको गाते हैं, पढ़ते हैं, तो आधे से अधिक कविता हमारे आपके सबके समझ में आ जाती है। तो आइए मैं आप सबके साथ प्रयास करता हूं इस कविता के पाठ का। मेरे साथ साथ आप भी अपने मन में इस कविता को पढ़ने का प्रयास कीजिए। अपने सामने कविता रखें और कोशिश करें कि उतार चढ़ाव के साथ हम इसको पढ़ें, और पढ़ने के पश्चात फिर हम इसके अर्थ के संदर्भ में क्या क्या बातें की गई है इस कविता में ये समझेंगे, जानेंगे। लेकिन पहले एक पाठ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नव की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आपने सुन ली कविता, और मुझे लगता है कि पाठ करते हुए थोड़ी बहुत बात कविता के संदर्भ में आपके समझ में अवश्य आई होगी। आप समझ गए होंगे कि किस विषय पर लिखी गई कविता है ये। तो चलिए अब बात करते हैं इस कविता में आई हुई चिड़िया के बारे में। क्या ये चिड़िया स्वतंत्रता चाहती है, आजादी चाहती है? आपको क्या लगता है कि ये किस चिड़िया की आवाज है? क्या किसी ऐसी चिड़िया की आवाज है जिसको पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, या ऐसी चिड़िया की आवाज है जिसे पूरी आजादी हासिल है, उड़ने की, खाने की, फुदकने की, भागने की, खुले आसमान में उड़ने की? अगर आपको लगता है कि ये उस चिड़िया की बात हो रही है जिसकी आजादी छीन ली गई है, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आजादी की बात वही करता है, स्वतंत्रता की बात वही करता है जिसकी आजादी छीन जाती है। और वो उन दिनों को याद करता है, उन दिनों के बारे में स्वप्न देखता है जिन दिनों में उनको स्वतंत्रता और आजादी हासिल होते थे। वैसे ही जैसे आजकल आप अपने विद्यालय के बारे में सोच रहे होंगे, है ना? आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आ रही होगी कि काश दोस्तों से मिलना होता, काश पार्क में और बाहर खेलने दौड़ने भागने को मिलता, काश खेल के मैदान से निकलकर अपने कक्षा में जाते, पढ़ते, मित्रों से मिलते, हंसते बोलते, ठहाके लगाते, बाजार में घूमते। पर ये सब अभी बीते दिनों की बात है। तो आप भी इन दिनों के बारे में सोच रहे होंगे, स्वप्न देख रहे होंगे। आप इन बातों को अपने दिमाग में रखें, अपने मन मस्तिष्क में रखें, और फिर इस कविता का अर्थ लगाने का प्रयास करें, तो देखिए कितना आनंद आएगा, और आप एक एक कर कविता की पंक्तियों का अर्थ भी समझते जाएंगे। तो चलिए मैं भी आपके साथ अर्थ लगाने का प्रयास करता हूं। हम पंक्ति पढ़ते हैं और कविता का अर्थ करने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहली पंक्ति से ही। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़बद्ध ना गा पाएंगे। ये एक पंछी की आवाज है, एक चिड़िया की आवाज है, जो कह रही है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अपने बारे में बता रही है वो चिड़िया कि हम कैसे हैं उन्मुक्त गगन के। गगन भी कैसा, जो उन्मुक्त है, खुला है, अनंत है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। गगन का मतलब आकाश। तो पंछी अपने बारे में बता रहे हैं कि हम पंछी कैसे हैं उन्मुक्त गगन के, खुले आसमान के रहने वाले, उड़ने वाले। पिंजड़बद्ध ना गा पाएंगे, पिंजड़बद्ध मतलब पिंजड़े में बंद होना। हम पिंजड़े में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, हमारी आवाज चली जाएगी। वैसे ही जैसे हमें कहा जाए कि आपको एक छोटी सी जगह में बंद कर दिया जा रहा है, और अब आप अपने मन की बात कीजिए प्रसन्न होकर, तो क्या हम कर पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़बद्ध न गा पाएंगे। पंछी कह रहे हैं कि हम पिंजड़े में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, क्योंकि हम खुले आसमान में रहने वाले हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब क्या होता है? स्वर्ण, सोना, एक महंगा धातु है जिसके लिए बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक स्वर्ण हो और सोने के होने से उनको प्रसन्नता मिलती है, उन्हें यह विश्वास होता है कि उनके पास धन है। तो चिड़िया कह रही है, पंछी कह रहे हैं कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, चाहे सोने का ही पिंजड़ा क्यों ना हो। कनक मतलब स्वर्ण, स्वर्ण की ही तीली से बना हुआ वो पिंजड़ा क्यों ना हो, हमारे पुलकित पंख, पुलकित मतलब प्रसन्न, खुश रहने वाले, जो बिल्कुल उड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, वैसे पुलकित पंख टूट जाएंगे। किससे टकराकर? कनक तीलियों, चाहे सोने का ही महंगा पिंजड़ा क्यों ना हो, हम उसमें नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम खुले आसमान में रहने वाले पंछी हैं। अब अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछी अपने बारे में कह रहे हैं कि हम तो बहते हुए जल को पीने वाले हैं, जो कटोरी में पिंजड़े में पानी दिया जाता है वो पीने वाले नहीं। हमें तो बहता जल पसंद है, चाहे वो नदी का हो, झरने का हो, तालाब का हो। तो हम बहता जल पीने वाले, हम बहते हुए पानी को पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे। क्यों? आगे की पंक्तियों में यह बताया गया है, क्योंकि कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्योंकि हमें भली मतलब अच्छी, हमें अच्छी लगती है क्या? कटुक, कटुक कटु शब्द से बना है। कटु का मतलब आप लोग समझते होंगे, कड़वी चीजें, कटु से कटु वचन बोलते हैं, वैसे आपने सुना होगा इस शब्द को। तो कटुक निबौरी का मतलब कड़वी नीम की, नीम के जो फल होते हैं जिसे निबोली कहते हैं, वो कड़वी नीम की निबोली हमें पसंद है, उसके बजाय जबकि अच्छे अच्छे पकवान मैदा से बने हुए सुंदर चीजें स्वर्ण कटोरी में क्यों ना परोसा जाए। तो कहने का मतलब ये कि सोने की कटोरी में भी अच्छी चीजें खाने के लिए दी जाए, उससे अच्छी तो हमारे लिए कड़वी निबोली है। नीम के फल ज्यादा अच्छे हमें लगते हैं इस सोने के कटोरी में, पिंजड़े में बंद होकर खाने की अपेक्षा। अब अगली कुछ पंक्तियां हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ये तो बस इन दिनों आप लोगों के मन की ही बात है, समझ लीजिए। जैसे आज कल आप लोग सपने देखते होंगे विद्यालय में पहुंच जाने का, खेल के मैदानों में दौड़ने और भागने का, अपने दोस्तों मित्रों से मिलने जुलने और ठहाके मारने का, वैसी ही कुछ इच्छा इन पंछियों की भी है। वो कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इस सोने की श्रृंखला, चाहे सोने के बने हुए बंधन ही क्यों ना हो, वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, रत्न जड़ित ही क्यों ना हो, अलग अलग तरह के स्वर्ण के आभूषणों से, पर हमें वो अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, हम अपने पंख नहीं खोल पा रहे हैं पिंजरे में बंद होकर, हम खुले आसमान में उड़ नहीं पा रहे हैं पिंजरे में बंद होने के कारण। तो ये स्वर्ण श्रृंखला, ये सोने के पिंजड़े, सोने की तीलियां हमारे किसी काम की नहीं है, सोने की कटोरी हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, अब तो बस सपनों में देख रहे हैं। सपनों में क्या देख रहे हैं? तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। तो तरु की फुनगी पर के झूले, अब तो हम तरु की फुनगी का मतलब हुआ कि पेड़ की जो सबसे, पेड़ का जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, सबसे ऊपर के भाग को, उसे फुनगी कहते हैं। तो तरु की फुनगी पर के झूले, पेड़ पर जो सबसे ऊंची जगह पर बैठकर हम झूला करते थे, बस वो हमारे लिए अब सपनों की बात हो गई है। तो पंछी उन दिनों को, उन स्मृतियों को याद कर रहे हैं और स्वप्न के माध्यम से उसको अव्यक्त कर रहे हैं। और ये सिर्फ पंछी ही नहीं, आपके मन की भी बात हो सकती है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी

0: पूंछ खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान का मतलब इच्छा। ऐसी हमारी इच्छा थी कि उड़ते, कैसे उड़ते, नीले नभ आसमान की। देखिए यहाँ पर नभ का मतलब है आकाश, और आकाश की विशेषता बताने के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, नीले। तो नीले नभ, नीले आसमान की सीमा पाने के लिए हम उड़ते। और आगे की कल्पना यह है कि लाल किरण सी चोंच खोल। आप देखें कि लाल किरण, जो सूर्य की किरण होती है, वो लाल रंग की होती है जब सवेरे सवेरे की किरण होती है, और कई चिड़ियों के चोंच भी लाल होते हैं। तो लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण जैसी चोंच को खोलकर हम क्या करते, आसमान में इतनी दूर उड़ जाते, इतना ऊपर पहुंच जाते कि तारों की कल्पना है, तारक अनार के दाने। हम तारों को अनार की तरह, जैसे अनार को चुगते हैं अपने चोंच से, वैसे उन तारों को खुले आसमान में पहुंचकर अपनी चोंच में भर लेते। ये सब चिड़ियों की कल्पना में ही चलने वाली बातें हैं। जब आज़ादी नहीं है उनके पास, जब वो उड़ नहीं सकते, तो अपनी इच्छा स्वप्न के माध्यम से और ऐसे व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इतना ऊपर पहुंच जाते कि तारों को भी भर लेते हम अपनी चोंच में। अब आगे की पंक्तियों की ओर हम बढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंछी कह रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज जहां धरती और आसमान एक साथ मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कहीं दूर आसमान में कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज, और क्षितिज वास्तव में कहीं होता नहीं, दिखाई पड़ता है बहुत दूर कि वहां पर क्षितिज है, पर वास्तविकता यह होती है कि क्षितिज कहीं होती नहीं। यह हमारा भ्रम होता है कि वहां धरती और आसमान आपस में मिल रहे हैं। तो ये पंछी कह रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा क्षितिज जो सीमाहीन है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ का मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन, दौड़ लगाना, एक तरह से आप समझिए। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की प्रतियोगिता होती। हम बाजी लगाते, हम होड़ लगाते एक दूसरे से आगे निकल जाने की, और इन पंखों की बाजी में हम लगा देते उस सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचने के लिए। मतलब ये कि एक तरह से पंखों की प्रतियोगिता, पंखों की बाजी लगती सीमाहीन क्षितिज तक पहुंच जाने के लिए। और आप जानते हैं कि हर किसी के भागने, दौड़ने या उड़ने की एक सीमा होती है। उस सीमा से आप अधिक उड़ेंगे, दौड़ेंगे, थक जाएंगे, गिर जाएंगे, और कई बार तो आपके सांस भी उखड़ जाएंगे। और बहुत लोग तो भागते दौड़ते या ऐसी जगह पर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, उनकी मौत भी हो जाती है। तो पंछी ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें कोई चिंता नहीं है कि उनका क्या होने वाला है, पर इन पंखों की होड़ा होड़ी में जो आनंद है, इसके लिए वो सीमाहीन क्षितिज तक भागने के लिए भी, पहुंचने के लिए भी तैयार हैं, उतनी बड़ी उतनी लंबी उड़ान भरने के लिए भी तैयार हैं। और फिर पंछी कह रहे हैं कि अगर ये होड़ होगी, अगर ये प्रतियोगिता होगी, तो फिर क्या होगा, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, जो क्षितिज दिख रहा है, जो कि एक भ्रम है, उससे हम या तो जाकर मिल जाते, वहां पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी। सांसों की डोरी तनने का मतलब यह है मृत्यु हो जाना। या तो हम उड़ते उड़ते उस प्रतियोगिता में मर जाते, हमारे सांस उखड़ जाते, दम टूट जाता, या फिर हम उस क्षितिज को ही मिलन बना लेते, हम उस क्षितिज तक पहुंच जाते। आगे की पंक्तियां हैं, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, एक तरह से पूरी कविता का निचोड़ इसमें मौजूद है। पंछी कह रहे हैं नीड़ का मतलब घोंसला, हमें टहनी का, पेड़ की डालियों का नीड़ ना दो, घोंसला नहीं बनाने दो, तुम चाहो तो तुम्हारे बस में है। एक तरह से ये मनुष्यों को कहा जा रहा है कि हम जिस प्रकार से पेड़ काट रहे हैं, पंछियों के लिए रहने वाले जगह को खत्म तहस नहस करते जा रहे हैं, उसी को संबोधित हैं ये पंक्तियां। नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें पेड़ की टहनी का चाहे घोंसला न बनने दो, चाहे आश्रय मतलब रहने की जगह, चाहे हमारे रहने की जगह को छिन्न भिन्न कर डालो, खत्म कर डालो, तहस नहस कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन पंख तुमने नहीं दिए हैं, पंख तो प्रकृति से मिले हैं, ईश्वर ने दिए हैं, जिसने बनाया है इस प्रकृति को उसी ने ये पंख भी दिए हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमारे अंदर उड़ने की जो लालसा, इच्छा और बेचैनी है, आकुल उड़ान का मतलब ये हुआ कि अंदर जो बेचैनी उड़ने की है, इच्छा है, उसमें विघ्न का मतलब व्यवधान, रोकना, उसमें कोई विघ्न नहीं डालो, वो खत्म ना करो, क्योंकि वही है जिसके बल पर हम जिंदा रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये कविता कहने को तो पंछियों के बारे में है, चिड़िया के बारे में है, लेकिन इस कविता में आज़ादी की बात की जा रही है, स्वतंत्रता की बात की जा रही है। चाहे हम हो, आप हो या कोई और हो, जब उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है तो वो कैसा महसूस करते हैं, इसकी बहुत शानदार रोचक अभिव्यक्ति चिड़ियों के माध्यम से इस कविता में की गई है। आप इसे अपने आप से भी जोड़ सकते हैं, आप किसी और से भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो खुद चिड़िया बनकर अपने मन की अभिव्यक्ति आप इस तरह से कर सकते हैं। तो एक तरह से ये कविता हमारे आपके सबके मन की बात है। तो ये कविता पंछियों की भी है और हमारी भी है, और पंछियों और हम, इन दोनों के माध्यम से इस कविता में पर्यावरण और प्रकृति के बारे में भी बातें की गई है। यह बताने की कोशिश भी की गई है कि अगर यह प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन खत्म होगा, अगर पंछियों को उन्मुक्तता नहीं मिलेगी, उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी, छिन जाएगी, तो आज न कल इस पर्यावरण में भी असंतुलन पैदा होगा और हमें, आपको, सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। तो ये है इस कविता का सार, संक्षेप। आपने पूरी कविता सुन ली, समझ ली, मेरे साथ साथ अर्थ करने के प्रयास में आप शामिल हुए। आइए अब इस कविता के माध्यम से हम कुछ भाषा की भी बात करते हैं, कुछ गतिविधि और कुछ भाषा की बात। आपने देखा होगा इस कविता को पढ़ते हुए कि बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं कि उन शब्दों को बताने के लिए एक और शब्द उनसे पहले रखे गए, और शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे किरण के पहले आपने देखा होगा लाल, लाल किरण, श्रृंखला के पहले आपने देखा होगा स्वर्ण श्रृंखला। ये वैसे ही है जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं काले बादल, तेज बारिश। अब ये किरण की विशेषता है, किरण कैसी है, तो किरण लाल है। श्रृंखला के लिए विशेषता श्रृंखला की विशेषता बताने के लिए वहां पर एक और शब्द स्वर्ण श्रृंखला का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से बादल शब्द जब आप कहते हैं कि बादल काले हैं, तो स्पष्ट करने के लिए कि बादल काले हैं, जिसकी बात आप कह रहे हैं वो काले बादल की बात है, आप काले शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बारिश की विशेषता जब आप बताते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है या हल्की बारिश हो रही है, तो बारिश की विशेषता को बताने के लिए आप तेज या हल्की शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस कविता को पढ़ते हुए आप भाषा की बात भी सीख सकते हैं, व्याकरण की बात भी सीख सकते हैं। अलग से भाषा या व्याकरण की बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, कविता में ही व्याकरण है, बस हमें देखना है कि उसका प्रयोग किस प्रकार हुआ है। अब जैसे किरण की विशेषता के लिए लाल शब्द, श्रृंखला की विशेषता के लिए स्वर्ण शब्द, तो इसे ही विशेषण कहते हैं। व्याकरण की भाषा में जब किसी की विशेषता बताने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर विशेषण है, तो आपको अलग से विशेषण पढ़ने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बेहतर तरीका भी यही है कि आप कविता पढ़ते हुए, कहानी पढ़ते हुए, जहां जहां विशेषण का प्रयोग किया गया है उसको पहचानें, और पहचान कर या तो उसको चिन्हित करें या अलग से लिख लें। तो आगे जब कभी भी ऐसे शब्द आएंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा कि ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसलिए ये विशेषण है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि भूखे प्यासे शब्द का प्रयोग किया गया है। अब भूखे प्यासे का मतलब क्या हुआ? छिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। भूखे प्यासे का मतलब भूखे और प्यासे, इसको अगर आप अलग अलग कर लिखेंगे तो। जैसे आप दाल भात कहते हैं, भाग दौड़ कहते हैं, तो भाग दौड़ जब आप कहते हैं तो भाग और दौड़, तो इस तरह के दो शब्द जब जुड़े होते हैं तो इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो आप यहां समास की बात को भी समझ सकते हैं, भूखे प्यासे के माध्यम से, छिन्न भिन्न के माध्यम से, भाग दौड़ के माध्यम से, और भी बहुत सारे शब्दों का उदाहरण आप सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आप 5-10 और ऐसे शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उनको भी लिखिए, तो आप विशेषण की बात भी समझ जाएंगे कविता को पढ़ते पढ़ते, समास की बात भी समझ जाएंगे कविता को पढ़ते पढ़ते, और अंत में आप सबके लिए एक सोचने के लिए, समझने के लिए और चेतना फैलाने के लिए एक छोटी सी गतिविधि, जिसके बारे में आप सब विचार कीजिएगा इस पाठ को पढ़ने के बाद, खत्म होने के बाद, कि क्या पक्षियों को पालना उचित है। इस कविता को पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि पक्षियों को पिंजड़े में बंद कर पालना चाहिए, और क्या हमारे पर्यावरण के लिए ये ठीक है? अगर अच्छे से आपके समझ में ये कविता आ गई है तो आप इस गतिविधि को करें, सोचें, अपने मित्रों से बातचीत करें, घर वालों से बातचीत करें, और फिर इस कविता की समझ को आगे बढ़ाएं अपने घर, परिवार, समाज, विद्यालय और दोस्तों के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही किसी और पाठ के साथ आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
1: इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीलकंठ कुमार। अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और तकनीकी सहायक सौम्या मलिक। निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
3: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
2: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
3: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
2: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
4: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
5: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं।

का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और इसी बीच हमारे से जुड़ी हुई है एक बहुत ही खास हस्ती, जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे। परिचय कराने से पहले हम बता देते हैं कि उनको रेडियो की दुनिया का अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी कि कहीं ना जाएं, उन्हें सुने। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गीतिका उनियाल जी, जो कि FM रेनबो पर बतौर रेडियो जॉकी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपको कैसा लग रहा है?
2: सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो शारदा 90.8 FM, इसके माध्यम से आज मैं आप सभी के बीच सम्मिलित हूँ, यानी कि रेडियो की इस दुनिया से मेरा संबंध और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि आज के विशेष दिन पर आपने मुझे आमंत्रित किया और आज मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और बहुत ही सुहाना सफर रहा है अभी तक रेडियो की दुनिया में, और उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर भी हम कुछ नया देंगे। हमारा हमेशा प्रयास यही रहना चाहिए।
1: जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो के बारे में, और रेडियो को जोड़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसा कि हमारी थीम भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेडियो एम्पावरिंग वॉइस ऑफ कम्युनिटी। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या AI कम्युनिटी की आवाज को और सशक्त बना सकता है?
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिटी रेडियो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और आज के युग में जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हर जगह है, तो रेडियो की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहीं ना कहीं और सशक्त करेगा। सशक्त कहने का मतलब ये है कि हम और भी ज्यादा इम्पावर हो जाएंगे। जहां पहले हम स्ट्रगल किया करते थे कि हम उचित सामग्री इकट्ठा करें और फिर अपनी स्क्रिप्ट बनाएं, स्क्रिप्ट बनाने के बाद फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग करें, फिर उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें या फिर लाइव जाकर अपने प्रोग्राम्स को दें, लेकिन अब चुटकियों में, क्षण भर में प्रोग्रामिंग आसानी से की जा सकेगी, क्योंकि हमारे पास AI के उपकरण यानी कि टूल्स मौजूद होंगे, जिसकी मदद से हम कुछ ही समय के अंदर अपने काम को कर पाएंगे।
1: हाँ, तो मैम, हम मान सकते हैं कि AI समुदाय की आवाज को और सशक्त बनाएगा और समुदाय के बीच में जाकर और बेहतर प्रोग्रामिंग करेगा। ग्रामीण लोगों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, बच्चों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे, सब पर AI बेहतर कंटेंट के साथ प्रोग्राम बना रहा है और लोगों के बीच में जाकर एक लोकप्रिय भूमिका में स्थित भी है। तो मैम, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से रेडियो के कंटेंट प्रोडक्शन में सबसे बड़ा बदलाव हमें क्या देखने को मिलेगा?
2: देखिए, अगर कंटेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम अगर अतीत के पन्नों को झांक कर देखें तो हमेशा से ही हमने रेडियो के माध्यम से कंटेंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। कंटेंट का अर्थ यहाँ पर है हमारी जो आम जनता है, जिनके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हीं की बात उन्हीं तक पहुँचानी है, जो मुद्दे हैं उन तक पहुँचाने हैं। तो प्रोग्राम के कंटेंट में इस तरह से फ़र्क पड़ेगा कि अब हम AI टूल्स के माध्यम से या AI के संपर्क में आने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में, यानी कि हमारे समुदाय के भी किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम उन लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे जो उस परेशानी से ग्रसित हैं या जो चाहते हैं कि उनकी आवाज आम आवाज बन जाए और सब तक बात पहुंचे, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी।
1: जी गीतिका जी, आपने हमारे लिसनर्स को बहुत जरूरी और बहुत ही बेहतर जानकारी दी है। जैसा कि आप FM रेनबो पर इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं, समुदाय के लोगों से जुड़ रही हैं, अनेक कार्यक्रम बना रही हैं, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, देश विदेश से संबंधित कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, और आपकी आवाज एक सशक्त माध्यम है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हम किसी भी रेडियो प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखते समय मानवीय संवेदनाओं को समझते हैं, क्या AI भी जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो मानवीय संवेदनाओं को समझ पाता है?
2: जी, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, AI अगर हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं तो AI हमें सशक्त सिर्फ डेटा देकर बनाएगा।
1: जी,
2: हमारी पूरी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि भावनात्मकता की अगर बात की जाए तो मनुष्य में है। जब मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल टूल्स बना रहा है जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ना कि उसको रिप्लेस करेंगे। आपने कभी क्या किसी को सुना है कि उसने अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया? ऐसा कभी होता नहीं है, और कभी होगा भी नहीं। तो एआई सिर्फ मदद करने वाला एक ऐसा टूल है जो हमारे समय को कम करेगा, यानी कि जितना समय हम पहले से लगाते आ रहे हैं किसी काम को करने में उसे कम कर देगा। लेकिन जब भावनाओं की बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, तो मनुष्य के आगे कोई और नहीं, मनुष्य अपने आप में एक ही है और एक ही रहेगा, और उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है वही रहेंगी जो मनुष्य के पास है। मनुष्य कोई रोबोट नहीं है, मनुष्य एक समय पर एक काम कर पाता है, चीजों का आकलन कर पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है, रो पाता है, हंस पाता है। आपने अगर अपने बच्चे के लिए घर पर किसी रोबोट को खरीदा है जो सिर्फ चलता है, नाचता है, गाता है, क्या कभी आपने उसको रोते हुए सुना है? कभी क्या आपने उसको हंसते हुए सुना है? वो तो आप ही के द्वारा चाबी घुमाने पर आपकी भाषा बोलता है, आप नहीं बनता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जैसा कि एआई इन दिनों कंटेंट फॉर्मेशन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम सामुदायिक रेडियो हैं, सुनो शारदा 90.8 एफएम। हम काम ही समुदाय के लिए करते हैं, लोकल वॉइस को आगे लेकर जाना। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों पर सरकार गंभीरता से बात करना चाहती है। हम समुदाय की आवाज बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी बीच मेरे मन में एक सवाल आता है कि एआई जहां हर तरीके के कंटेंट का निर्माण कर रहा है, क्या लोकल भाषाओं में भी एआई अपना कमांड कर पाएगा? कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं ब्रजभाषी बोली जाती है। अगर हमें अपने समुदाय से जुड़ना है तो हम लोकल लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या एआई लोकल लैंग्वेज पर कमांड कर पाएगा या कर पा रहा है, और वो कितना समुदाय तक पहुंच पा रहा है, ये आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
2: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब यहाँ पर बात क्षेत्रीय भाषाओं की हो रही है, जैसा कि आपने स्वयं से प्रश्न किया है इस बात में कि हम कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं, और कम्युनिटी यानी कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग राज्यों के समुदाय, अलग अलग गाँव के समुदाय स्टेशन हो गए, तो वहां पर क्षेत्रता बदलेगी तो भाषा बदलेगी। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है, जब हम अपने जो हमारा प्रदेश है, जो हमारी कम्युनिटी है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे ना, तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्शन के लिए जरूरी है उस भाषा का इस्तेमाल करना अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने कंटेंट में, जिससे कि समुदाय है वो हमसे जुड़े। अगर मैं किसी समुदाय को संबोधित कर रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो शायद मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगी। एआई निश्चित रूप से यहाँ मददगार होगा। एआई टूल्स का इस्तेमाल कर हम किसी और भाषा में, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंटेंट ऐसा है जो किसी और भाषा में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है ना, ये मेरे समुदाय के लोगों के बड़ा काम आने वाला है, तो एआई टूल्स को यूज कर उसका इस्तेमाल कर मैं उस भाषा का अनुवाद करवा सकती हूँ। क्षण भर में मेरे पास अनुवाद आ जाएगा, और क्योंकि मैं जानकार हूँ, मैं समुदाय से अपना संबंध रखती हूँ, और समुदाय के लोगों को जानती हूँ, उनकी भाषा को जानती हूँ, और मैं फिर उसको अनुवादित कर अपनी भाषा में उन तक पहुंचा सकती हूँ।
1: हाँ, तो हम मान सकते हैं कि लोकल भाषाओं में एआई अच्छा कंटेंट बना सकता है।
2: जी
1: मैम, आप हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, और हम चाहते भी हैं कि हमारे समुदाय के लोग जमीनी स्तर पर आपसे जुड़ें। मेरा अगला सवाल आपसे है कि कम्युनिटी रेडियो के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधनों में कम्युनिटी रेडियो को रन करना होता है। हम टीम मेंबर्स समुदाय के बीच में जाकर समुदाय की आवाज बनना चाहते हैं, ऐसे में एआई की तकनीक को हम किस तरीके से अपना सकते हैं? क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग का जरूरत है, या हम समुदाय के लोगों के बीच में जाकर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट एआई के से बनाकर जो कि लोकल डायलेक्ट में हो उनके बीच पहुंचा सकते हैं? इस बारे में आप मुझे थोड़ा
2: देखिए, जब आपने कहा बताया आपको अपने समुदाय से जुड़ना है
1: जी,
2: तो मुझे लगता है कि आधी आत्मीयता तो आपने वहीं पूरी कर ली, जब समुदाय में यानी कि समुदाय में रहने वाले लोगों से आप जाकर मिले, आपने उनसे वन टू वन टॉक करी, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे आत्मीयता वहीं स्थापित कर ली। एआई उनकी मनोस्थिति नहीं जानता है, एआई आपको मदद करेगा, टूल्स मदद करेंगे कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में क्या क्या परेशानियां हैं। आपके पास हो सकता है सवालों की एक फेहरिस्त जरूर बन जाए, लेकिन सच में वो सवाल या वो मुद्दे उस समुदाय में हैं भी, या उस समुदाय को संबोधित करने वाले हैं भी या नहीं है, वो आप समुदाय से बात करके पता करेंगे। तो जो भी आप एआई की मदद से सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, उसका क्रॉस चेक जरूर कीजिए। पूरी तरह से किसी भी उपकरण पर अपने आप को निर्भर कर देना, ये गलत होगा। आज के युग में जब व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, तो आप किसी उपकरण पर विश्वास कर फिर से ऐसे कैसे एक रेडियो प्रोग्राम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं जो सीधा जुड़ा हुआ है आम जनमानस से।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। जैसा कि हम कोई भी रेडियो कार्यक्रम बनाते हैं समुदाय के लिए, तो हम काफी रिसर्च करते हैं, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, समुदाय के बीच में जाकर लोगों की बात सुनकर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कि लोगों की असल मुद्दे क्या है जो रेडियो के माध्यम से जाने चाहिए। लेकिन आजकल बहुत तेजी के साथ स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है। क्या हमारे प्रोग्रामों की जो क्रिएटिविटी है उस पर AI का बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया है, या आने वाले समय में AI ही स्क्रिप्ट लिखेगा तो फिर रिसर्च करके प्रोग्राम कैसे बनेंगे? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
2: ये प्रश्न भी आपका बहुत बहुत अच्छा है। AI स्क्रिप्ट, मैंने फिर कहा कि AI अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा जो एकदम आर्टिफिशियल है, वो उतनी ही सामग्री आपको देगा जितना उसके परिप्रेक्ष्य में आती है। मैं ये कहती हूँ कि जो दिमाग ईश्वर ने इंसान को दिया है वो शायद इंसान भी मशीन को नहीं दे सकता।
1: जी बिल्कुल,
2: है ना। तो जब हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हम उसके कहते हैं ना कि हम किसी चीज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों को लेकर आप जब स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आपको लगता है ये प्रश्न यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। सिर्फ ये मानव जाति के पास ही इस तरीके के गुण मौजूद है कि उसके पास ये शक्ति है कि वो अच्छे और बुरे में से अच्छे को अपने पास रखता है और बुरे को निकाल देता है। AI आपकी मदद कर सकता है, आपको स्क्रिप्ट दे सकता है, लेकिन फिर आपको पुनः निर्माण अपनी स्क्रिप्ट का, अपने प्रोग्राम का खुद करना होगा। ये मान लीजिए कि आपने अपने किसी साथी से हेल्प मांगी कि मेरी मदद कर दो क्या।
1: बिल्कुल,
2: उसने मदद की, पर आपको पूर्ण रूप से भी अपने साथी पर निर्भर नहीं होना है। उसने सिर्फ मदद की है,
1: जी
2: वो आप नहीं है। जिस तरह से दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में एक है, आप मुझ जैसी नहीं और मैं आप जैसी नहीं, तो भला फिर मुझ जैसा AI कैसे हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: तो कहते हैं ना कि मेरा क्लोन कोई भी नहीं अगर सही मायने में देखा जाए।
1: हाँ, सब अपने आप में
2: पूर्ण है, यूनिक है। तो क्योंकि मुझ जैसा कोई नहीं तो मशीन मेरे जैसी कैसे हो सकती है।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि मशीन मेरे जैसी नहीं हो सकती, इसलिए उस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते।
1: जी मैम, आपने बेहद अच्छी बात कही कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है और कोई किसी का क्लोन नहीं बन सकता है। मैम, हम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम समुदाय की बात करते हैं, ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो सरकार तक जानी चाहिए। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या AI की मदद से हम ग्रामीण स्तर की कहानियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा सकते हैं?
2: देखिए, राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिए आपको अब, जैसा कि आज मैं सिर्फ AI नहीं कहूंगी यहाँ पर, आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए तो मुझे लगता है कि शायद आज सोशल मीडिया ही काफी है।
1: बिल्कुल,
2: कि आपने आज किसी मुद्दे पर बात करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके बाद जिस तरह से वो वायरल होता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो देश का मुद्दा बन जाता है। और यही कारण है कि शायद मन की बात जैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हुए हैं कि जो देश के मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचे, और जब वो मुद्दे उन तक पहुंचते हैं पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, तो वो खुद उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं बाकायदा रेडियो पर। तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें आत्मिक बने रहना है, एक दूसरे से बात करते रहना है, और निश्चित रूप से हमारी बात पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
1: जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं बेहद जरूरी हैं, जो AI उस तरीके से नहीं रख सकता जिस तरीके से हम रखते हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल इसी विषय पर है, क्या AI के कारण रेडियो में मानवीय संवेदनाएं और भावनाओं की कमी देखने को मिलेगी? क्या इस वजह से श्रोताओं का जुड़ाव हमसे कम होगा? अगर हम AI यूज करें तो हम किस हद तक यूज करें कि हमारे श्रोता हमसे जुड़े रहें?
2: जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं इस पर यही कहूंगी कि AI यूज कौन कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ट्रांसमिशन की, पैकेजिंग की, तब मैं कहती हूँ कि हम AI का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं AI हमारा काम थोड़ा कम कर देगा कि हमें प्रोग्राम को पैकेज करना है। आप और मैं ये साक्षात्कार कर रहे हैं, AI की मदद से आने वाले समय में आपने जो बात की और आपने बीच में मान लीजिए कोई गाना लगाना है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इस परिप्रेक्ष्य में मैं कौन सा गाना लगाऊं। AI टूल का इस्तेमाल कर तुरंत आपके लिए एक गाने को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और देखिए, जो समय आप आधा घंटा लगाते हैं उस गाने को ढूंढने में, एआई टूल की मदद से आपने उस गाने को ढूंढ कर
1: कुछ सेकंड्स में ढूंढ कर लगा दिया।
2: तो कहने का अर्थ यह कि आपकी प्रोग्रामिंग पैकेजिंग के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल बेहतरीन है, लेकिन फिर दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगी बार बार कि जब मानवीय मुद्दों की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो दुनिया में हम जैसा कोई नहीं, यानी कि मनुष्य जैसा कोई नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि जो संचालन कर रहा है कार्यक्रम का वो कितना इन्फॉर्म्ड है, वो अपने कार्य के प्रति, अपनी रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए कितना ज्यादा सजग है, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ये चाहता है कि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी कहूँ ना वो सब कुछ विश्वसनीय हो,
1: क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है।
2: तो वो एआई पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहेगा। वो जो भी सामग्री तैयार कर रहा है, जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ एआई की मदद से अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, वो किताबें ढूंढेगा, वो अखबार ढूंढेगा, वो रिसर्च पेपर्स देखेगा, उसके बाद ही संकलन करेगा, संग्रहण करेगा और अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेगा। हाँ, एआई की मदद ले सकता है, पर पूर्ण रूप से वो एआई पर निर्भर नहीं करेगा। जो लोग एआई पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे, निश्चित रूप से उनके प्रोग्रामिंग में, उनके कार्यक्रमों में आपको कहीं ना कहीं अलगाव महसूस होगा, आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये मेरी बात नहीं कही जा।
1: तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे श्रोता उतना नहीं जुड़ पाएंगे जितना कि उस प्रोग्राम से जुड़ पाते हैं जो हम खुद रिसर्च करके, मेहनत करके, समुदाय के बीच में जाकर उनकी संवेदनाओं को महसूस कर बनाते हैं।
2: जी, अब देखिए, माना आप और मैं यहाँ पर एक साक्षात्कार कर रहे हैं और आपको मेरी जिंदगी की वो पहलू पता है जो शायद किसी को नहीं पता। तो बताइए कि आत्मीयता इस बात से ज्यादा होगी कि आपने उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर किया रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, या फिर आपने एआई के माध्यम से मेरे बारे में ढूंढ कर या उसके द्वारा एक स्क्रिप्ट बनाकर मुझसे सवाल
1: पूछ लिया। जो मुझे आपके बारे में जानकारी है, जो आत्मीय जानकारी है, उस पर अगर मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दूंगी तो मेरे श्रोता ज्यादा जुड़ेंगे आपसे।
2: जी जी, तो यही फर्क रहने वाला है कि जो लोग पूर्ण रूप से एआई पर निर्भर रहेंगे वो कहीं ना कहीं उस मानवीय पहलू को भूल जाएंगे।
1: जी,
2: वो उसको उजागर ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग जो काम करेंगे, जो करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो ज्यादा जुड़ेंगे अपने लोगों तक।
1: अच्छा मैम, कहते हैं कि रेडियो दिल की आवाज है, रेडियो पर जब कोई गाना बजता है तो वो हमारे दिल तक पहुंचता है, क्या मशीन दिल की आवाज सुन सकती है? मशीन से मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है।
2: जी, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर ने ये दिल सिर्फ इंसान को दिया है, मशीन को नहीं, तो भला मशीन हमारे दिल की धड़कन कैसे सुन पाएगी? मैं फिर से कहूंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बार बार बात हो रही है, ये मानव की ही खोज है। भगवान ईश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो इंसान ने मशीन को बनाया है। जिस तरह से ईश्वर सर्वोपरि है, उसी प्रकार मानव सर्वोपरि है मशीन के लिए। मशीन को भी ऑपरेट करना पड़ेगा, मशीन को भी चलाना पड़ेगा, मशीन को भी कमांड देना पड़ेगा, तो वो हम ही तो देंगे ना। तो जब हम ही देंगे तो हम क्यों सिर्फ मशीन लर्निंग पर, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से? मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर।
1: तो मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो करना है, लेकिन हमें पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं रहना। मैम, आजकल एक चीज बहुत सुनने में आ रही है, वॉइस क्लोनिंग। कई लोगों ने कहा भी कि हमारी वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये नैतिक रूप से सही है?
2: मैं कहूंगी कि नैतिक रूप से सही इसलिए नहीं है कि कल चलकर, माना कि रेडियो स्टेशंस के लिए अगर क्लोन बना दिए गए और इस्तेमाल भी कर लिए गए, आपने अपनी मैन पावर को कम कर लिया, आपके बहुत सारे मुद्दे सुलझ गए, जहां आप मान लीजिए कि अगर आप किसी रेडियो स्टेशन में 12 घंटे अपने देते हैं तो आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका क्लोन चल जाएगा, यानी कि क्लोनिंग वॉइस चल जाएगी। लेकिन ये मानिए कि ये जो दुनिया है ना, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर है, खासतौर पर अगर रेडियो की बात की जाए।
1: जी,
2: तो जो हमें यहां सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो कल चलकर लोग अपनाते हैं, और जब किसी चीज को अपनाया जाता है तो उसके सकारात्मक पहलू भी अपनाए जाते हैं और नकारात्मक भी। तो कहीं ना कहीं अगर वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल होने लगा तो कल चलकर बहुत ज्वलंत मुद्दे शुरू होने की आशंका है, क्योंकि कहते हैं कि संसाधन हमारे लिए, मनुष्य के लिए, पर मनुष्य पर निर्भर करता है कि उन संसाधनों को वो कैसे उपयोग में लेकर आएगा। इसका उपयोग गलत तरीके से होने लगा तो हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, वो शायद कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। कोई भी मेरी आवाज का इस्तेमाल कर मैं बनकर कुछ भी गलत कर सकता है, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए
1: और इस पर हमें ध्यान देने की भी जरूरत है। मैम, हम सामुदायिक रेडियो हैं, हम समुदाय के लिए ही काम करते हैं। तो आपने सुना होगा कि सोशल स्टोरी टेलिंग मतलब समाज से जुड़े हुए मुद्दों की कहानियां जब बड़े मंच पर पहुंचती हैं तो वो लोगों पर काफी गहरा प्रभाव डालती हैं। साथ में जब हम कम्युनिटी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या AI टूल्स आने से सोशल स्टोरी टेलिंग ज्यादा बढ़े हैं, मतलब लोग सोशल स्टोरी टेलिंग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं या पहले की तुलना में कम हुए हैं?
2: देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि अगर खास तौर पर पत्रकारिता की बात की जाए ना, तो पूरी पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव आया है
1: जी।
2: पहले एक जमाना हुआ करता था जब पत्रकार सिर्फ पेंसिल से लिखा करता था। फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, डिजिटाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी जो सशक्त पत्रकार हैं, सशक्त लोग हैं, जो आम जन की आवाज आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वो आज भी शब्दों की गरिमा को या ये कह लीजिए विषय की गरिमा को बनाए बैठे हैं। आपके कुछ शब्दों से विषय बदल सकता है, उसका मुद्दा बदल सकता है। आप कितने सजग हैं और आप कितने ज्यादा अपनी जो समुदाय है उसके प्रति आप संवेदनशील हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल कर या AI का इस्तेमाल कर आप अपनी जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उसमें क्या फेरबदल हो गया। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर संवेदनशीलता की बात आती है तो सर्वप्रथम अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल जो है ना वो सबसे पहले आपको सही मार्गदर्शन करता है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं
1: जी।
2: तो पूर्ण रूप से संवेदनशील विषयों पर AI पर निर्भर रहना, तो मैं यही कहूंगी क्रॉस चेक।
1: बिल्कुल, क्रॉस चेक बहुत जरूरी है,
2: बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, बार बार यही कहूंगी, निर्भर नहीं होना है
1: जी। बिल्कुल सही कहा, हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, उन पर निर्भर नहीं होना। तो मैम, अभी तक तो हम रेडियो कहते आए थे, लेकिन आजकल हम सुनते हैं स्मार्ट रेडियो। रेडियो अब स्मार्ट होता जा रहा है, रेडियो पहले से काफी आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो रेडियो है उसके भविष्य को AI किस तरफ ले जा रहा है? ये ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहा है या इनोवेशन की तरफ लेकर जा रहा है?
2: देखिए, मैं ये कहूंगी कि सर्वप्रथम तो ऑटोमेशन
1: जी।
2: सर्वप्रथम ऑटोमेशन इसलिए है कि एक कार्यक्रम को बनाने के लिए ना जाने कितने दिन लगते थे पहले।
1: बिल्कुल,
2: बहुत दिन लगते थे, रिसर्च की जाती थी, स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी, फिर स्क्रिप्ट में भी किस तरह की स्क्रिप्ट है ये डिसाइड किया जाता था। अगर पैनलिस्ट हैं आपके कार्यक्रम में तो आपको पैनलिस्ट को बुलाना होता था, प्रोग्रामिंग करने में बहुत सारे दिन लगा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब दुनिया भर में काम हो जाया करेंगे। इनोवेशन तो तब होगा जब हम एक नया फॉर्मेट लेकर आएंगे, कि रेडियो के माध्यम से हमने कहा कि हम टॉक शो कर रहे हैं, हम कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कोई फॉर्मेट लेकर आते हैं तो इनोवेशन होगा। लेकिन अगर हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगी सिर्फ ऑटोमेशन है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत सही जवाब दिया। मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि AI सिर्फ एक सहायक टूल है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से निर्भर होना ठीक नहीं है। मैम, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस तरीके से AI ने हमारे रेडियो के प्रोग्रामिंग को काफी आसान बनाया है, लेकिन श्रोताओं का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से बदलेगा? हम AI से कार्यक्रम तो बना लेंगे, प्रोग्राम तो बना लेंगे, लेकिन श्रोताओं का हमारे लिए इंटरेस्ट लगातार किस तरीके से बदलेगा, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
2: देखिए, श्रोताओं का इंटरेस्ट तभी बदलता है जब आप उनसे उनकी जैसी बात नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए बहुत आत्मिक हो रहे हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ जो है ना स्माइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं,
1: जुड़ गए हम,
2: जुड़ गए। रेडियो के माध्यम से भले ही आप अपने श्रोता को नहीं देख सकते, श्रोता आपको नहीं देख सकते, लेकिन आपकी जो आवाज कि जो गरिमा है, जिसका जादू है ना, सुनने वाले को अपने रेडियो सेट्स पर यही सुनाई देता है जैसे साक्षात वो व्यक्ति ना मेरे पास मेरे घर में बैठा हुआ है
1: जी।
2: तो अगर हम AI पर बहुत ज्यादा निर्भर होंगे, देखिए AI की भाषा पर अभी भी हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते। आपने कई बार अगर जो लोग ChatGPT और इन सब का इस्तेमाल करते हैं, बड़े शौक से कहते हैं कि हमने ये स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, आप उनकी स्क्रिप्ट और एक व्यक्ति द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को जब कंपेयर करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आत्मीयता किसमें ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगी और हर बार यही कहूंगी कि मानव मूल्यों का कोई तोड़ नहीं, और AI आपको सामग्री दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जैसे इमोशंस नहीं डेवलप कर सकता, आपके जैसे बात नहीं कर सकता।
1: जी बिल्कुल, वो हमारे जैसे ना तो इमोशन डेवलप कर सकता है ना श्रोताओं से इतना जुड़ाव महसूस कर सकता है। मैम, हम छोटे स्टेशन है, हम समुदाय से जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है उन्हें AI को किस तरीके से देखना चाहिए, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए या एक अवसर के रूप में देखना चाहिए?
2: जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, चाहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो, प्राइवेट FM स्टेशन हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किन के लिए काम कर रहे हैं, हमारी आवाज किन के लिए है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए है जो हमें सुनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगियों में हमारी वजह से बदलाव आता है, जो बदलाव को महसूस करते हैं। अगर खास तौर पर कम्युनिटी रेडियो की बात की जाए तो अगर आपको वो उपकरण दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रामिंग को सशक्त कर सकते हैं तो क्यों नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि टूल्स का इस्तेमाल चाहे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हों या कोई भी FM स्टेशन क्यों ना हो, जरूर करें, क्योंकि अगर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम किया जा सकता है, जरूर करें। लेकिन हाँ, अगर हम संचालकों की बात करें जो आवाज की दुनिया के जादूगर हैं, उन्हें अपना जलवा आवाज का अपनी ही आवाज में, यानी कि अपनी दिल की आवाज के जरिए ही करना है, ना कि AI की दिल की आवाज के जरिए।
1: हाँ, यानी अपनी आवाज का जलवा बरकरार रखना है। मैम, आपसे मेरा अब आखिरी सवाल है, और आपने हमें बड़ा कीमती समय दिया है अपना, लेकिन ये सवाल मेरे श्रोताओं के लिए बेहद जरूरी है। हम सामुदायिक रेडियो हैं तो हम समुदाय की बात ही करेंगे, क्योंकि हमारा समुदाय ही हमारी ताकत है। मैम, समुदाय के बीच में जाकर एक बात मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि लोकल भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि समुदाय अपनी भाषाओं से बहुत तेजी से जुड़ता है। तो क्या AI लोकल भाषाओं में प्रोग्राम बनाकर कंटेंट को और जीवंत बना सकता है, और या उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है?
2: मैं तो यही कहूँगी, जब मेरी माँ बचपन से मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय भाषा में बात करती आई और मैंने उस भाषा में अपनी माँ को ढूंढ लिया, तो बताइए क्या AI मेरी माँ बन सकती है? उसी भाषा में क्या AI मुझसे बात कर सकती है जो मार फटकार प्यार दुलार मेरे परिवार से मुझे मिला, मेरी भाषाओं या मेरी भाषा के माध्यम से, जिस भी क्षेत्र को मैं संबंध रखती हूँ, जिस भी क्षेत्र से, तो जो चीज़ मुझे बिन मांगे मिल गई वो मांग कर, यानी कि AI के माध्यम से कैसे मिल सकती है? मेरा पूरा जीवन अपनी क्षेत्रीय परिसर में गुजरा है।
1: बिल्कुल,
2: तो जो मेरे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे दिया, जो भाषा मुझे प्राप्त हुई वहां से, AI जिसका जन्म अब हुआ, वो कैसे मुझे वो दे सकता है जो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ था ही नहीं? तो जो मेरे साथ बचपन से था ही नहीं वो मुझे समझ ही नहीं सकता, जो मुझे समझ ही नहीं सकता वो मुझे वो क्या कैसे दे सकता है जिस बात की मैं कल्पना कर रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि क्षेत्रता की अगर आप बात कर रहे हैं तो व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र से संबंध है वही उन मूल्यों को आम जनमानस तक पहुंचा सकता है जिस क्षेत्र से वो संबंध रखता है। AI फिर कहूंगी कि ये सहायता का उपकरण है।
1: बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे बीच में एक सेतु का काम कर रहा है।
2: जी,
1: AI हमारी मदद कर रहा है सूचनाओं को देने में, हमें अपडेट करने में, हमारे टूल्स को आसान बनाने में, तकनीक को आसान बनाने में। फिर भी जो हमारी संवेदनाएं हैं उस पर हमें उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से हम करते आए हैं। हमें समुदाय के बीच में जाना होगा, लोगों को सुनना होगा, समझना होगा, और लोगों की हर बात को अपने स्तर से पहुंचाना होगा। हाँ, तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे मेरे साथ गीतिका उनियाल जी को, जो कि FM रेनबो पर बहुत फेमस प्रेजेंटेटर हैं। उनकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है और लोग उनकी आवाज़ से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम और आप भी जुड़ गए। आज स्टूडियो में उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया और हमसे AI तकनीक और सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर काफ़ी बातें शेयर करी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। मैम, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, एक और विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं फिर कहना चाहूंगी कि AI हमारे टूल्स की जानकारी के लिए प्रोडक्शन में मदद करेगा, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की जगह, ओरिजिनलिटी की जगह, जिज्ञासा की जगह, समुदाय की आवाज की जगह AI नहीं ले पाएगा।
3: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Bingo on Malaysia ka the end. Chicken gunya ka the end. Dimagi bukhar ka the end.
1: तारा तुम कर क्या रही हो तारा?
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह।

0: मच्छरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878-93-7770. Seats are limited. Hurry up, kahin der na ho jaye.
2: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा 90.8 FM। Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9377 0। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937770. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए
1: नमस्कार मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM

अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
0: बाय बाय।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है, उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है, बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा, और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है, जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
2: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
2: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
2: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
2: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
2: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।
3: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90

0: सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
1: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.
6: Solo Sharda.
7: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
8: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
7: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हांजी भाई कुट बड़ी पैंदी हुंदी जे फिर ना क्यों दस्या नहीं ते मुड़ के जी कित मेरे वांगू फड़े गए ना ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी मैं तो ट्यूशन बारे पूछण आया सी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

बंदा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा तेरी ना

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: चारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
2: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: आइए जानते हैं माहवारी अनियमितताओं के बारे में। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और आपकी माहवारी 3 या उससे अधिक महीने तक नहीं आती है,
2: अचानक से आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है,
1: आपकी माहवारी 7 दिनों से अधिक समय तक चलती है,
2: आपको हर घंटे या 2 घंटे पर पैड या टैम्पॉन बदलने की जरूरत पड़ती है,
1: माहवारी के दौरान आप बहुत अधिक दर्द का सामना करती हैं,
2: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है,
1: आप माहवारी के दौरान स्पॉटिंग का अनुभव करती हैं,
2: आप माहवारी के दौरान अन्य लक्षणों जैसे सामान्य रक्त स्त्राव या बुखार का अनुभव करती हैं,
1: तो आपको उपचार के लिए फौरन नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करना चाहिए।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और एडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है ये हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म नहीं, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए, और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजी साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुनो शारदा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac

0: www.dhn.in महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महावारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टैंपून, महावारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
0: महावारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महावारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
1: महावारी कप सैनिटरी पैड और टैंपोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
0: महावारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
1: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है। इसमें खर्च भी कम होता है।
0: महावारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
1: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
0: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
1: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
0: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
1: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।